0: वंदे मातरम।
1: सुजलां सुफलां मलयज शीतलां।

101.9 FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आज दिन है शनिवार, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है इस मंगल धुन के साथ।

0: यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेंसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, LPG आपूर्ति, AI सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ

अमेजोन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। प्रस्तुत है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

चिंतन। गोस्वामी तुलसीदास का कथन है, फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के समय सज्जन भी नम्र होते हैं, परोपकारियों का स्वभाव ऐसा ही होता है। ये था चिंतन, अब भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। झरोखा सुनिए आज दिन भर के कार्यक्रमों का लेखा जोखा। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम होगा। 7:30 पर आप सुनेंगे हम हैं राही प्यार के। संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला चल रही है ऐसी लागी लगन। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं जाने बने गायक अनूप जलोटा। आज 5वीं कड़ी होगी सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता विक्की कौशल पर। यह कार्यक्रम सुबह 9:30 पर होगा और रात 9:30 पर। दिन में 1 बजे सुहाना सफर कार्यक्रम सुनिएगा, सुरीला सफर कार्यक्रम सुनिएगा। 3:30 पर आप सुनेंगे नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक शकुंतला। 4 बजे के अंतर्गत आज शाम 4 बजे जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। सुबह 8:15 पर और दिन में 2:15 पर, दिन में 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त ने। ये रिकॉर्डिंग हमारे संग्रहालय से निकालकर प्रस्तुत की जा रही है। शाम 7 बजे ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे कहानी पत्नी का पत्र के वाचन का दूसरा भाग।

आप सुन रहे थे विविध भारती से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम,
0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, कि किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटी उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानि से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप कर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

0: गीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। आठ कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण दीनी चदरिया, दास कबीर जतन कर ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। निर्गुण भक्ति धारा के अप्रतिम कवि संत कबीर ने समाज की विडंबनाओं को उजागर किया और एक जीवन दर्शन दिया। ऐसी लागी लगन भक्ति संगीत पर आधारित श्रृंखला की इस कड़ी में एक बार फिर हम श्री अनूप जलोटा जी का स्वागत कर रहे हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आज की इस कड़ी में अनूप जी, कबीर की रचनाओं की चर्चा हम करेंगे। बताइए किस रचना, या यूं कहें कि जो हमें पसंद है, आज उसकी चर्चा करें। चदरिया जीनी रे जीनी।
2: चदरिया जीनी रे जीनी मेरे पिताजी ने बहुत गाया और बहुत लोकप्रिय किया। उसके बाद

मैं भी चल पड़ा इस भजन को लेके आगे। ये भजन यूं तो राग देश पर आधारित है, लेकिन इसमें एक रागमाला प्रस्तुत की जाती है, और वो रागमाला प्रस्तुत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लोगों में जो लोग शास्त्रीय संगीत के शौकीन नहीं थे वो इस ओर आकर्षित हो गए और शास्त्रीय संगीत सुनने लगे, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे दर्शन हम रागों के कराते हैं उससे उनका जी नहीं भरता और वो कहते हैं इसको और गाइए। इस तरह से शास्त्रीय संगीत की ओर लोग आकर्षित हुए, इसकी मुझे बड़ी खुशी है।

अर्थात शरीर ने जन्म लिया। रंगरेज रंगरेज है गुरु, गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया।

0: मालिक हूँ।
1: सुदामन
0: धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी धनी

0: वाह, बहुत सुंदर। बहुत बार सुना है ये भजन, हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुना और इतनी बारीकियां पता चली, कई रागों की छटा देखने को मिली। आप अनूप जी हमें बताइए, हमारे तमाम श्रोताओं को, कि ये जो रागों का खेल करते हैं, कई रागों का मिश्रण करते हैं, उसके बावजूद सरलीकरण करके लोगों तक पहुँचाते हैं भजन, ये जादू कैसे करते हैं?
1: वैसे भी राग सरल चीज है, राग कठिन चीज नहीं है। राग का मतलब है कि किसी चीज को और सुंदर बनाना। तो जब स्वरों को एक सुंदर रचना दी जाए, एक सुंदर कॉम्बिनेशन दिया जाए, तो एक राग बन जाती है। यूं ही लोगों को डरा दिया गया है कि यह क्लासिकल मुश्किल चीज है। क्लासिकल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, थोड़ा आपका कंसंट्रेशन हो, तो इसका आनंद दुगना हो जाता है। आपको अगर थोड़ा सा रागों का पता लग जाए, तो उसी गाने को जो आप पहले से सुन रहे हैं, उस गाने को आप ज्यादा एंजॉय करने लगेंगे, अगर आपको पता लग जाए कि ये किस राग में है। इसलिए शास्त्रीय संगीत की ओर आपका झुकना, आपका आकर्षित होना बहुत आवश्यक है, तभी आप संगीत में और आनंद ले सकेंगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: जानकारी देने के लिए। हमारे श्रोताओं का भी बहुत लाभ हो रहा होगा और वैसे भी संगीत सरिता एक पाठ की तरह है श्रोताओं के लिए। कलम और कागज लेकर बैठते हैं, नोट करते हैं और हम भी कागज कलम लेकर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब समय आ गया है इस कड़ी को समेटने का। ऐसी लागी लगन, भक्तिभाव पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी पांचवी कड़ी।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आइए सुने भूले बिसरे गीत। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम यूनुस खान है।
1: ये तस्वीर तो मेरी है।
2: नहीं, ये तस्वीर है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है, और इससे मैं कहती हूँ।
0: क्या आप इन आवाजों को पहचान गए? इन आवाजों के पार एक बेमिसाल गाना।

बुले बिसरे गीत कार्यक्रम की ये पहली पेशकश थी। केदार शर्मा के बोल थे, रोशन की तर्ज और ये आवाज गीता रॉय और मुकेश की थी। बावरे नैन फिल्म सन 1950 में आई थी, जिसका गीत इस वक्त हमने आपको सुनवाया। बुले बिसरे गीत कार्यक्रम में कुछ ऐसे गाने जो गुजरे दौर के गाने हैं और चमकते हुए सितारे हैं, पर उनकी चमक शायद आज के इस फॉरवर्ड जमाने में थोड़ी धुंधली पड़ गई है। फिल्म का नाम है रंगोली, गीत शैलेंद्र, संगीत शंकर जयकिशन।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए। विविध भारती से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम चल रहा है और सुबह के 7:11:40 हो चुके हैं और ये गाना गूंज रहा है। ये मासूम सी आवाज अमित गांगुली की, फिल्म का नाम दूर कराही, गीत ए इरशाद, संगीत किशोर कुमार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है, 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सुबह के 7:15 होने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 7:20 पर। 7:30 से 8 बजे तक आप सुनेंगे कार्यक्रम अमृत कलश। 8 बजे प्रस्तुत होगा समाचार प्रभात। 8:15 पर प्रस्तुत होंगे कार्यक्रम सुर संगम। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। साथ ही सुनेंगे झलकी दिल की भड़ास, लेखक राजकुमार दाग बाग, निर्देशक कमल दत्त। 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 पर आप सुनेंगे बातें आसपास की। बातचीत का विषय होगा श्री राम यंत्र राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकरंग। 1 बजे आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 1:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। 2 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 2:30 से प्रस्तुत होगा कार्यक्रम नारी जगत। चर्चा का विषय होगा प्रकृति आधारित मनोरंजन के लाभ और सावधानियां। शाम 5 बजे से एक बार फिर आप सभी जुड़ेंगे आकाशवाणी अयोध्या के साथ। प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाणी। बातचीत का विषय होगा सिक्किम दिवस, शांतिपूर्वक एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। हमारी धरोहर में जानेंगे हम्पी के स्मारक समूह के बारे में और आर्थिक जगत में बातचीत होगी अवसर लागत पर। शाम 5:30 से प्रस्तुत होगा कार्यक्रम लोक संगीत। 6:10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम शाम सुहानी। 6:30 से प्रस्तुत होगा कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। 6:45 से किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाड़ी। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा मक्का की खेती। भेंट वार्ता में सुनेंगे जायद की सब्जी उत्पादन, वार्ताकार होंगे डॉक्टर लोकेश यादव, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र पांती अम्बेडकर नगर। 8:15 पर प्रस्तुत होगा एक ही कलाकार से कार्यक्रम। कलाकार विशेष में दिव्या भारती के बारे में बातचीत करेंगे। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:15 पर आप सुनेंगे महफिले गजल। 9:30 पर आप सुनेंगे हेलो अयोध्या। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार तथा 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। या थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से। सुबह का

0: पहला संकल्प ये ले कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धन है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़ी वादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ, राष्ट्रहित की भावना के साथ बिजली और ईंधन की बचत का किया आह्वान। 21 जून को दोबारा होगी नीट UG 2026 की परीक्षा, विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर, अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा, प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के एकाना स्टेडियम में हुए IPL मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और आवास की चाबियां भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्ष में तेजी से हुए विकास के चलते उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूती देने का आह्वान किया।
3: ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया और गोरधोइया नाला परियोजना की प्रगति जानने के बाद सड़क परियोजना के चौड़ीकरण का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
4: स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस बुरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना।
2: राष्ट्रीय

0: परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी देर एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टि जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
0: उधर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देशभर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से हैं। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपये प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहां कहीं देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीश की कारपुलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशुहानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसको ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर कल से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। बांदा जिले में केन नदी में कल नहाने के दौरान 2 किशोर सहित 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। 1 किशोर का शव नदी से तत्काल निकाल लिया गया, जबकि अन्य 2 शव रेस्क्यू अभियान के बाद बरामद किए गए। आईपीएल में कल लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ईकाना स्टेडियम में हुए मुकाबले को लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत लिया है। देर रात तक चले मैच में लखनऊ ने चेन्नई सुपर

0: किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ की टीम को जीत के लिए 188 रन का लक्ष्य दिया, जिसे लखनऊ ने 3 विकेट खोकर मात्र 16.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। लखनऊ की ओर से मिशेल मार्श ने 38 गेंदों में 90 रन की शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच घोषित हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। राष्ट्रहित की भावना के साथ बिजली और ईंधन की बचत का किया आह्वान। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपने पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए आईपीएल मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत कलश।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।

0: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी। बहुजन हिताए, बहुजन सुखाए, जन जन की सेवा में शिक्षा और मनोरंजन के लिए सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी। तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
1: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
0: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
1: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
0: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
1: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
0: छोटा सा प्रयास, बड़ा उपकार।
1: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
2: कार्यक्रम अमृत कलश में आइए सुनते हैं श्री हनुमान आरती अनूप जलूटा की आवाज में।

0: इसी भजन के साथ कार्यक्रम अमृत कलश यहीं संपन्न होता है।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में $5 अरब के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
4: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
5: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर

0: ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
3: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
4: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैठलाट बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक

0: अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गई। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में दो दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं, वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मानसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात। न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संगम।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: कार्यक्रम में पहला गीत आइए सुनते हैं सुखविंदर सिंह की आवाज में।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनते हैं केके की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर संगम 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: अपने वाहन को भीड़भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
3: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
2: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
3: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
2: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
3: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
4: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। आपके साथ है आपकी दोस्त मेधा। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करते हैं किसी महत्वपूर्ण विषय पर और साथ होता है गीत संगीत का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात से। दोस्तों, आज हमारी बातचीत का विषय है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। प्रकाश मानव जीवन का आधार है। सूर्य की किरणों से लेकर बिजली के बल्ब, लेजर, मोबाइल स्क्रीन और इंटरनेट तक हर क्षेत्र में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है। विज्ञान, चिकित्सा, संचार, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण में प्रकाश तकनीक ने दुनिया को एक नई दिशा दी है। इसी महत्व को समझाने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की शुरुआत यूनेस्को द्वारा वर्ष 2018 में की गई। इस दिन को चुनने का कारण यह है कि 16 मई 1960 को वैज्ञानिक थियोडोर मेमेन ने पहली बार सफल लेजर का प्रदर्शन किया था। यह खोज विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। यदि हम प्रकाश का महत्व देखने का प्रयास करें तो प्रकाश केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि यह जीवन और विकास का आधार भी है। जैसे पौधे प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अर्थात फोटोसिंथेसिस। खाना बनाने की प्रक्रिया जो पौधों में होती है वो प्रकाश के जरिए ही संभव हो पाती है। चिकित्सा में लेजर तकनीक से कई रोगों का उपचार संभव हुआ है। फाइबर ऑप्टिक तकनीक के कारण तेज इंटरनेट और संचार सेवाएं उपलब्ध हुई हैं। सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। इस दिवस का उद्देश्य यह है कि यह लोगों को बताया जाए कि प्रकाश, विज्ञान और तकनीक समाज के विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दिवस वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों और आम जनता को नई खोजों और नवाचारों के लिए प्रेरित करता है।

इस अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों और वैज्ञानिक संस्थानों में भाषण, निबंध, लेखन, विज्ञान प्रदर्शनी और जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण, सौर ऊर्जा और वैज्ञानिक सोच के महत्व के बारे में बताया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हमें यह संदेश देता है कि प्रकाश केवल अंधकार दूर नहीं करता, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और प्रगति का मार्ग भी दिखाता है। हमें प्रकाश तकनीक का सही उपयोग करके समाज और पर्यावरण के विकास में योगदान

श्रोताओं के लिए एक सूचना है, अत्यधिक गर्मी, हीट वेव या लू लगने के बारे में सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह। दोस्तों, जैसे कि आजकल मौसम ने अपने रंग दिखाने शुरू किए हैं, उस समय तो बारिश हो रही थी, लेकिन आजकल फिर से धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हीट वेव अर्थात लू लगने से अपना बचाव किया जाए। प्रचार माध्यमों से हीट वेव लू के संबंध में जारी की गई जानकारी चेतावनी पर ध्यान दिया जाए। हीट स्ट्रोक अर्थात लू लगना के लक्षण जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, घबराहट होना, धड़कन और सांसों को तेज हो जाना अथवा मूर्छा आदि को पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, अर्थात शरीर में जल की

0: कमी को ना होने दें। अधिक से अधिक पानी पिएं, यदि प्यास ना लगी हो तब भी पानी पीते रहें। घर से बाहर जाते समय पीने का पानी साथ ले जाएं। ORS घर में बने हुए पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी, नींबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें। इससे शरीर में पानी की कमी की भरपाई होती रहेगी। साथ ही मौसमी फल और सब्जियां जैसे तरबूज, खरबूज, संतरे, अंगूर, अनानास, खीरा, ककड़ी, सलाद, ये अवश्य अपने भोजन में शामिल करें। शरीर को ढक कर रखें, जहाँ तक हो सके हल्के रंग के हल्के वस्त्र पहने, अर्थात कॉटन के वस्त्र पहने। अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो धूप से बचाव के लिए शरीर को ढक कर रखें। सिर ढकने के लिए छाता, टोपी, तौलिया, गमछा आदि का प्रयोग करें। धूप में जाते वक्त आंखों की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा पहनें और पैरों के बचाव के लिए जूते चप्पल का प्रयोग करें। यथासंभव अधिक से अधिक अवधि के लिए घर, कार्यालय इत्यादि के अंदर ही रहें, अर्थात आप कार्यालय के जो भी दफ्तर हैं, ऑफिस हैं या घर हैं उसके अंदर की तरफ ही रहें, ताकि आप धूप के संपर्क में कम से कम आए और लू से बचे रहें। अन्य सावधानियां आप ये ले सकते हैं, जैसे कि बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को अकेला ना छोड़ें, इनकी नियमित रूप से देखभाल करते रहें। घरों को ठंडा रखें, दिन के समय पर्दे, खिड़कियां, दरवाजे इत्यादि बंद रखें और रातों को खिड़कियां खोल लें। शरीर के तापमान को कम रखने के लिए पंखे, गीले कपड़े आदि का प्रयोग करें। खुद को लू से बचाएं और अपने परिवार को और अपने आप को स्वस्थ रखें।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
2: नहीं अछूता हो
1: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
3: आपके संदेश,
4: संदेश से आते हैं
3: आपके गीत,
5: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
3: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
0: आकाशवाणी अयोध्या के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं झलकी। शीर्षक है दिल की भड़ास। लेखक है राजकुमार दागबाग और निर्देशक है कमल दत्त। तो आइए सुनते हैं ये झलकी।

0: बासंती।
1: अरे भाई बासंती।
2: अरे आ गए आप।
0: क्यों तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? जा रहा हूँ।
2: क्या बात है, बहुत गुस्से में हो?
0: क्यों घर में आते हुए क्या गाना गाते हुए आते हैं?
2: जरूर कोई बात है जो मूड इस कदर ऑफ है।
0: अरे भाई जब आदमी दफ्तर से थका हारा आएगा तो मूड ऑफ नहीं होगा तो क्या होगा?
2: क्यों बाकी दुनिया दफ्तर नहीं जाती क्या? क्या सभी लोग घर में घुसते ही टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं?
0: अरे अब तुम्हें दफ्तरों के बारे में कुछ मालूम हो तो तुमसे कुछ बात करूं?
2: मालूम क्यों नहीं, जरूर आपको झाड़ पड़ी है।
0: इसे कैसे मालूम हुआ कि कौन कहता है मुझे झाड़ पड़ी है? कौन कहता है?
2: साफ लग रहा है। और ये प्रोग्राम तो अक्सर रहता है दफ्तर में आपका।
0: तो फिर इस खुशी में दावत कर डालो, थोड़ा नाच गाने का प्रोग्राम बना डालो।
2: उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप दफ्तर का गुस्सा दफ्तर में ही छोड़कर आया कीजिए। मामूली मामूली बातों पर दिमागी तवाजुन बिगड़ जाता है आपका।
0: तुम्हारे लिए बात मामूली होगी और मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है।
2: आग।

0: क्या?
1: अरे इस बॉस के बच्चे ने नाक में दम कर दिया है मेरा।
0: तो इसका इलाज ये थोड़ी है, सर का बदला घर से ले।
1: अरे तो फिर क्या इलाज है? अरे क्या बॉस के सामने बोलकर नौकरी छुड़वा लूं अपनी?
0: ये मैं कब कहती हूँ, अपना काम ठीक से करो और झाड़ टपक से बचे रहो।
1: अरे अपना काम ठीक करने के बाद जब बॉस ये फाइला थमा दे कि ये काम घर से करके लाना, तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? और फिर मेरा बॉस तो एक नंबर का बद दिमाग और सनकी है। अरे बात बात पर काटने को दौड़ता है, काटने को। तमीज से बात करना तो उसे आता ही नहीं।
0: इससे कुछ कमजोरी आपकी भी होगी।
1: मेरी?
0: आपको ऐसे बॉस को अपने हक में करने के लिए बहुत सूझबूझ और मेहनत से काम करना होगा।
1: अरे अरे मगर इस वक्त तो मेरी ये हालत है कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो उसे गले से पकड़ लो गधा कहीं को।
0: फिर तो इसका एक ही इलाज है।
1: वो क्या?
0: ऑपरेशन भड़ास निकास।
1: आई ऑपरेशन भड़ास निकास?
0: हाँ, ऑपरेशन भड़ास निकास। इस तरकीब पर अमल करने से आपका गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा।
1: अच्छा।
0: और आप बहुत हल्के फुल्के महसूस करने लगेंगे।
1: मतलब
0: ये कि ये एक मनोवैज्ञानिक इलाज है गुस्सा मारने का।
1: मैं अभी नहीं समझा।
0: मैं समझाती हूँ।
1: हाँ, समझा।
0: सबसे पहले आप आराम से बैठिए, फिर एक गिलास ठंडा पानी पीजिए, फिर अपनी पत्नी को अपना शुभ चिंतक समझकर सारी बातें सुनाइए। ऐसा करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है।
1: बात खूब। यानी कि मैं तुम्हें सुनाऊं कि किस तरह मेरी दुर्गत हुई, किस तरह बॉस ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की और किस तरह उसने मुझे डैम फूल तक बोला।
0: बिल्कुल, आप शुरू से लेकर आखिर तक मुझे सारी बात बताइए। मैं हर बात पर आपकी हाँ में हाँ मिलाती जाऊंगी और इस तरह आपके मन को ठंडक पड़ती जाएगी।
1: हरगिज नहीं। यानी मैं अपनी बेइज्जती का ढिंढोरा पीटूं और जिनको इसका पता नहीं है उनको भी मालूम होने दूं।
0: अजी आप ही तो कह रहे थे कि आपको बिला वजह और बिला कसूर डांट पड़ी है, फिर अपनी सफाई देने में हर्जी क्या है?
1: जी नहीं, मैं इज्जतदार मर्द हूँ और एक औरत के सामने शर्मसार नहीं हो सकता।
0: तो फिर आप ऑपरेशन भड़ास निकास की क्लॉज नंबर 2 का इस्तेमाल कीजिए।
1: क्लॉज नंबर 2?
0: जी हाँ, जो बात आप मुंह से बताने में हिचकिचाते हैं उसे लिखकर बताइए।
1: लिखकर?
0: हाँ, आपसे आपके बॉस ने जो भी ज्यादती की है उसके जवाब में जो भी आप उसे सुनाना चाहते हैं वो एक कागज पर लिख डालिए और आपका जी हल्का हो जाएगा।
1: जी मैं तो उसे ढेर सारी गालियाँ देने को बेचैन हूँ।
0: वही तो, आप उसके नाम एक तरह से खत लिखिए और उसके बारे में जो भी आपकी राय है ना और जो भी गुस्सा आप निकालना चाहते हैं उसे लिख दीजिए। उसके बाद आप अपने अपने फर्क महसूस करने लगेंगे।
1: ये फिर भी हो सकता है, हैं? उसमें मैं उसकी हर बदतमीजी, बददिमागी और तानाशाही का जिक्र कर सकता हूँ और इससे मुझे किसी एक्शन का भी कोई डर नहीं होगा।
0: बिल्कुल। तो उठाइए पेन और कागज और शुरू हो जाइए। मैं तब तक आपके लिए चाय बनाकर
1: ला। ठीक है। हाँ, ये रहा पेन और ये रहा कागज। तो हाँ, मैं अभी सब कुछ लिख कर इस नालायक की खबर लेता हूँ। हाँ, तो कैसे शुरू करूँ? हाँ, रेस्पेक्टेड शर्मा जी। रेस्पेक्टेड कैसे? अरे वो तो निंदा के काबिल है, निंदा के काबिल। मिस्टर शर्मा। अरे वैसे तो मिस्टर लिखने को भी जी नहीं चाहता हूँ मगर लिखे देता हूँ। हाँ तो मिस्टर शर्मा, न जाने किस अहमक ने आपको हमारा अफसर मुकर्रर किया। हाँ, और वो कैसी मनुष्य घड़ी थी जब आपको हमारे दफ्तर पर सवार किया गया। हाँ, और जबकि आप एक नंबर के बददिमाग, बदहवास और सनकी हैं। आगे लिखता हूँ। हाँ, आपके भेजे में अकल की बजाय गोबर है, गोबर। हाँ, आप सारे स्टाफ के लिए एक मुसीबत है। आपसे बात करना गोया बेइज्जती करवाना है। अभी कुछ दिन पहले आपने मुझे डांट दिया कि मैंने आपके कमरे में छींक क्यों मार दी। हालांकि ये एक बेख्तियारी चीज है और आज आपने मुझे इस बात पर फटकारा
2: कि मैं 8 फाइलों का काम

0: एक दिन में
1: क्यों नहीं कर पाया, जबकि आप जानते हैं कि आधा दिन आपने मुझे अपने पर्सनल कामों पर लगाए रखा, और इस पर जुल्म ये कि इन फाइलों का काम घर पर करने को भेज दिया। तुम आदमी हो या हिटलर, जी तो चाहता है ये सारी फाइलें उठाकर आपके मुंह पर मार दूं, मगर मेरा ख्याल है इतना ही काफी है। अगर शर्म वाला होगा तो बाज आ जाएगा। हाँ, अब ये भी लिख दूं, तुम्हारा मनोहर लाल, UDC।
2: हाँ जी, लिख लिया प्रोटेस्ट नोट, निकाल ली दिल की भड़ास। आप कहिए कैसा महसूस हो रहा है?
0: तुमने तो कमाल कर दिया बसंती डार्लिंग, कमाल कर दिया। अरे मेरा तो सचमुच दिल ठिकाने आ गया है।
2: अच्छा?
0: अरे भाई खूब है ये फार्मूला।
2: और अब अगर इसका असर ज्यादा देखना हो ना, तो कुछ देर बाद उसे फिर से पढ़िएगा, दिल को और ठंडक महसूस होगी।
0: ये भी करूंगा।
2: अच्छा, मैं रसोई में जा रही हूँ।
0: अरे ये खत मैं इस मैगजीन में रख देता हूँ, वापस आकर फिर पढ़ूंगा। तो मैं अब चलूं, अरे भाई वरना दुकानें बंद हो जाएंगी। हाँ।

0: सोनू बेटे।
1: जी डैडी।
0: अब बेटे ये लो तुम्हारी कॉपियाँ।
1: थैंक यू डैडी।
0: ओह नो मेंशन माय बॉय। अब बेटे मम्मी कहाँ है?
1: मम्मी बाहर गई है, कह रही थी अभी आ जाऊंगी।
0: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तुम जाओ बेटे तुम जाओ है।
1: अच्छा डैडी।
0: तुम जाओ बेटे। मेरे ख्याल में एक बार फिर वो प्रेम पत्र पढ़ लिया जाए। वो मैगिन आई? अरे वो मैगिन कहाँ गई? अरे मैं तो यहीं रख कर गया था, हैं यहाँ भी नहीं है और भाई यहाँ भी नहीं है। अब बेटा सोनू। अब बेटे यहाँ एक मैगजीन रखी थी, तुमने देखा उसे?
1: नहीं डैडी, मुझे तो पता नहीं।
0: पता नहीं फिर कहाँ गई?
1: हाँ डैडी,
0: हाँ।
1: थोड़ी देर पहले आपके दफ्तर का एक दोस्त आया था।
0: हाँ।
1: वो मैगजीन पढ़ रहा था।
0: दफ्तर का दोस्त? कौन सा दोस्त?
1: वो डी ब्लॉक वाले अंकल, बिट्टू के डैडी।
0: अरे मरवा दिया, वो मेहंदी रत्ता। अरे वो मेरा दोस्त कहाँ है? अरे वो तो मेरा जानी दुश्मन है। अरे आया होगा साला किसी मतलब से।
1: वो थोड़ी देर आपका इंतजार करके चले गए।
0: हाँ, और ले गया होगा वो मैगजीन खत समेत और गया होगा सीधा बॉस के घर। सोनू सोनू बेटा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, बेटा तुम घर का ख्याल रखना है।
1: अच्छा डैडी।
0: हाँ घर का ख्याल रखना। हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया? अगर वो खत बॉस तक पहुंच गया तो अपने खैर नहीं। कोई बात नहीं, पहले मेहंदी रत्ता के घर चेक कर लूं।
2: नमस्ते भाई। नमस्ते
3: नमस्ते।
0: मेहंदी रत्ता जी
2: है क्या?
3: नहीं
2: हा?
3: वो थोड़ी देर पहले आपके घर गए थे।
2: हा?
3: आप घर पर नहीं थे।
2: हा?
3: फिर वो अपने दफ्तर के एक दोस्त खन्ना के साथ 2 मिनट के लिए यहाँ आए।
2: हा?
3: और ये कह के चले गए कि वो अपने साहब के घर जा रहे हैं।
0: साहब के घर? तो फिर मैं चलता हूँ भाई जी। गुड मॉर्निंग सर।
4: गुड इवनिंग मिस्टर मनोहर।
0: आई एम वेरी सॉरी सर। गुड इवनिंग सर।
4: गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
0: हेलो। थैंक यू सर। हेलो मेहंदी रत्ता।
4: हेलो।
0: हेलो खन्ना।
4: हेलो हेलो मनोहर भाई, आपके घर से होकर आ रहा हूँ मैं।
0: मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। थैंक यू थैंक यू। वैसे सर How are you, sir?
4: Fine. हाँ मनोहर भाई।
0: हाँ?
4: मैं आपके घर गया था कि
0: वो हाँ, ये आपके आपके आपके हाथ में मेरी मैगजीन है ना, आप मेरे घर से इतनी जल्दी क्यों चले आए?
4: भाई जहाँ दफ्तर का मामला हो
0: हाँ?
4: तो इंटरेस्ट लेना ही पड़ता है। और मनोहर भैया,
0: हाँ?
4: इसके जिम्मेदार भी तो तुम ही

0: हो?
1: मैं मेरा कोई कसूर नहीं है सर, ये सब मेरी बीवी का किया धरा है। अरे मैंने उसे सिर्फ इतना कहा था कि आज साहब मुझ पर बहुत नाराज हुए और उसने ये सब।
0: बीवी का किया धरा?
1: हाँ जी।
0: मैं नाराज?
1: हाँ।
0: ये तुम क्या कह रहे हो मिस्टर मनोहर?
1: हाँ जी वो।
0: यहाँ तो सिर्फ ये बात हो रही है कि हाँ? इसका क्रेडिट मिस्टर मेहंदी रत्ता को जाता है,
1: हाँ?
0: जो हमेशा

0: तक हो जाता है, जो हमेशा अपने कान और आंखें खुली रखता है।
1: नहीं सर,
0: उसने तुम्हारे घर में मैगजीन खोलकर पढ़ लिया और मुझे आकर खबर दे दी।
1: सर मेरा मतलब उस खत से है जो मेहंदी रत्ता ने लाकर दिया है आपको, और जिसमें मेरी हिमाकतों का कच्चा चिट्ठा है सर।
0: मगर मिस्टर मेहंदी रत्ता ने तो सिर्फ मुझे तुम्हारी मैगजीन लाकर दिखाई है, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट की एक्सपेंशन की सरकारी सिफारिश की खबर है और डिपार्टमेंट के हेड यानी मेरी प्रमोशन का जिक्र है।
1: जी जी जी जी जी जी जी,
2: और वो जिसे तुमने अपनी मैगजीन होने पर भी नहीं देखा। और यही खुशखबरी देने के लिए हम साहब के घर चले।
1: आई एम सॉरी सर, मुझे कुछ गलत फहमी हो गई थी। दरअसल जिस खत का मैं जिक्र कर रहा था वो मैंने अपनी बीवी को लिखा था, और न जाने उसमें क्या लिख दिया था।
3: आ गए आप, अब मगर कहाँ गए थे,
1: अब
3: बताकर भी नहीं गए।
1: अरे कुछ ना पूछो, वो जो खत तुम्हारे कहने पर मैंने लिखा था ना, वो मेहंदी रत्ता के हाथ पर गया और शायद वो बॉस को दे आया है।
3: खत बॉस को दे आया है? मगर वो खत तो मेरे पास है।
1: तुम्हारे पास? मगर वो तो
3: जी हाँ, आपके जाने के बाद मैंने वो खत मैगजीन से निकाल लिया और उसे अलमारी में रख दिया है ताकि इधर उधर ना हो जाए। क्यों, अब क्या उसे दोबारा पढ़ के जी हल्का करना है?
1: अरे बसंती डाली, अरे जी तो मेरा ऐसा हल्का हुआ है मानो हवा में उड़ रहा है। आइंदा मैं मेहनत से और ठीक से काम करूंगा दफ्तर में, और इन भड़ास निकास के चक्करों से दूर ही रहूंगा।
4: ये झलकी आप सुन रहे थे, जिसके लेखक थे राजकुमार दाग और निर्देशक थे कमल दत्त। कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532 21909।
1: प्रणाम अयोध्या।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त मेधा को। नमस्कार।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
1: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
2: फोन नंबर 91-61-877-347।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
5: सुनत हो सखी, सुनत हो कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
6: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
5: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
6: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
7: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में मैं मेधा श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे आपके व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से आई फरमाइशी गीतों को। तो चलिए कार्यक्रम में देर ना करते हुए सबसे पहले जानते हैं कि पहली फरमाइश किसकी आई है। ये पहली फरमाइश हम तक आई है सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे, श्रद्धा मालोदे, मानसी मालोदे की। इन्होंने ये फरमाइश हमें शिरडी से भेजी है। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत। ये गीत आप सुनेंगे फिल्म धनवान से। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है पीएस नावकर की। साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं निर्मला नावकर, विशाल नावकर, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। इन्हीं के साथ ये गीत सुनना चाहते हैं मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: है तार, टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?

0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

आकाशवाणी अयोध्या के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगली फरमाइश हम तक किसकी आई है। ये फरमाइश हम तक आई है नबी हसन अब्बासी की। साथी गीत इस गीत को सुनना चाहते हैं शहनाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, राशिद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी। इन्होंने ये फरमाइश हम तक पहुंचाई है मारहरा दरवाजा एटा से। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत।

ये गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है पारस मनी, गीत को लिखा है असद भोपाली ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में आइए जानते हैं कि अगली फरमाइश हमारे पास किसकी आई है। ये फरमाइश हम तक आई है हिंदुस्तान रेडियो मित्र की बन्ने बुजुर्ग पलेरा से। इन्होंने ये हमें भेजा है, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। और जो ये गीत सुनना चाहते हैं उनके नाम हैं ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये गीत आप सुन रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है साहेब बीबी और गुलाम। गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत है हेमंत कुमार का।

कार्यक्रम में अंतिम गीत की फरमाइश हम तक आई है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। इस गीत को सुनना चाहते हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत संपन्न होता है। ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम पुजारी से, संगीत था एसडी वर्मन का और गीत को लिखा है नीरज ने। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त मीधा को, नमस्कार।

0: FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातें आसपास की।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।

कार्यक्रम बातें आसपास की में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। आपके साथ है आपकी दोस्त मेधा। दोस्तों, आज हमारी बातचीत का विषय है श्री राम यंत्र, राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपरी भाग में स्थापित श्री राम यंत्र को मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति और वैदिक ऊर्जा का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। मंदिर के तीसरे तल पर स्थापित यह यंत्र विशेष धार्मिक अनुष्ठानों और वैदिक विधियों के अनुसार प्रतिष्ठित किया गया है। इस बारे में हम और भी आगे कार्यक्रम में बहुत सारी बातें करेंगे, पर पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत। ये गीत आप सुनेंगे अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है छिछोरे। गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं श्री राम यंत्र की, जो कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित हुआ है तीसरे तल पर। इसकी स्थापना की बात करें तो 19 मार्च 2026 को, अर्थात चैत्र नवरात्रि के पहले दिन को, अयोध्या के राम मंदिर में राष्ट्रपति द्वारा एक स्वर्ण निर्मित श्री राम यंत्र की स्थापना की गई है। श्री राम यंत्र भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की दिव्य ऊर्जा, मर्यादा और विजय का प्रतीक एक जियोमेट्रिकल अर्थात ज्यामितीय आकृति है। यह यंत्र सकारात्मक ऊर्जा को केंद्रित करता है, जीवन में सुख समृद्धि लाता है और बुरी नजर, शत्रुता व नकारात्मकता से रक्षा और सुरक्षा प्रदान करता है। यह गीत आप सुन रहे हैं अभय जोधपुरकर की आवाज में फिल्म जीरो से। गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है अजय अतुल का।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
3: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
2: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
3: और साथ में अपना नाम, पता
2: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
3: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
4: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थारे जैसा न कोई।
0: यह है

0: का अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

दोस्तों, श्री राम यंत्र के महत्व की यदि बात करें तो यह यंत्र घर, कार्यालय या पूजा स्थान पर स्थापित करने से वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र रहता है। इसके पूजन से मानसिक अशांति दूर होती है, पितृ दोष व राहु केतु के दुष्प्रभावों से बचाव होता है और साथ ही साथ जीवन में सफलता और स्थिरता भी आती है। इस प्रतीक और इसकी ऊर्जा की बात करें तो यह यंत्र भगवान राम के आदर्शों, धर्म और विजय का प्रतीक माना जाता है। यह जीवन से नकारात्मकता को खत्म कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

ये गीत आप सुन रहे हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में फिल्म बंटी और बबली से। संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

मंदिर वास्तु शास्त्र के में ऊपरी भागों को दिव्य ऊर्जा के प्रसारण का क्षेत्र माना जाता है। इसी कारण तीसरे तल पर स्थापित श्री राम यंत्र को मंदिर के आध्यात्मिक तरंगों के केंद्र के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि यह तंत्र पूरे मंदिर परिसर में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। इससे मंदिर की दिव्यता बढ़ेगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। भगवान श्री राम की कृपा और संरक्षण का माध्यम माना जाता है। यह साधना और ध्यान की आध्यात्मिक शक्ति को सुदृढ़ करने का काम भी यह करता है। ये गीत आप सुनेंगे आयुष्मान खुराना की आवाज में, लिखा है वायु ने और संगीत है तनिष्क।

दोस्तों, सनातन धर्म में यंत्रों को देवी शक्ति का ज्यामितीय स्वरूप कहा गया है। जैसे मंत्र ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वैसे ही यंत्र आकृति और कंपन के माध्यम से आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। राम मंदिर में स्थापित श्री राम यंत्र इसी प्राचीन यंत्र विज्ञान की परंपरा का प्रतीक है। राम मंदिर के तीसरे तल पर स्थापित श्री राम यंत्र केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, वैदिक वास्तु और श्री राम भक्तों की आस्था का दिव्य केंद्र माना जाता है। यह मंदिर की आध्यात्मिक गरिमा और सनातन

परंपरा की गहराई को दर्शाता है। ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म अग्निपथ से, आवाजें हैं उदित नारायण और सुनिधि चौहान की। गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है अजय अतुल का।

0: दोस्तों, हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में एक छोटी सी खुशी जरूर मिलती है। उसे महसूस करते रहिए और अपनी मुस्कान से दुनिया को रोशन करते रहिए। जैसा कि ये गाना कह रहा है, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त मेधा को। आपसे हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें आसपास की। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रातः के 10 बजे हैं, सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
4: जीवन एक सरल रेखा, वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है।
5: रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे। पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत

बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे, आज वो कक्षा की देहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल काय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। फिर तो ठीक है, त्योहार से ज्यादा का जरूरी है, सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है, और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपी आने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी, हो सके तो नया मोबाइल लेती हूँ जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आई, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर ली। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्या ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई, ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं। मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम, बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है, क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्या कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी, बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं।

अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ, कश्मीर मैडम। आज प्राचार्या भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय,

0: लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं। समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधारताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका। सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना।
1: देखो हम 150 रुपया लेंगे।
0: ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। UPI पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है। वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में

प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संध्या की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डब्बा अम्मा को पकड़ा दिया। साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी। पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी। पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद नंदोई आ रहे हैं खाने पर, उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना। फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए। क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकंठ यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकंठ नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा। सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकंठ सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी है, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकंठ बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुरमुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है, मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकंठ अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकंठ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे, वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकंठ की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था।

की सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकंठ को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है। पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का। मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकंठ का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगा कर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी, और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए। पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: खत लिख दे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान का लिखा ये गीत। संगीत सपन जगमोहन का है।

देश में निकला होगा चांद और मधुर मन में गीत गाता होगा। सुनते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में भरत व्यास का लिखा ये गीत। संगीत रमेश नायडू का है।

मन अड्डे के स्वर में आपने सुना ये गीत श्याम सागर का संगीत था। और अब सुनते हैं इंद्रानी रिजवी और राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। कलाम डॉक्टर बशीर बद्र का है और संगीत है बेनी सतमाकर का।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटनी शो। मैटनी शो में आज बातें और गाने उन फिल्मों के जो अपनी रिलीज के बरस के मुताबिक आज उम्र के खास पायदान पर जा पहुंची हैं, यानी साल 2026 में या तो पहुंच चुकी हैं या पहुंच जाएंगी। रिलीज से अब तक 25 बरस या 50 बरस का सफर पूरा कर चुकी हैं या कि आने वाले महीनों में पूरा कर लेंगी ये फिल्में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म लगान की। साल 2001 में रिलीज हुई ऐतिहासिक खेल ड्रामा फिल्म लगान, निर्माता आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर। इस फिल्म की पृष्ठभूमि थी ब्रिटिश शासनकाल, जिसमें एक छोटे से गांव के लोग करों के बोझ से दबे हैं और उस पर सूखा पड़ जाता है। ऐसे में एक घमंडी ब्रिटिश अधिकारी उनके सामने क्रिकेट खेलने की शर्त रखता है। गाँव वालों के लिए ये बिल्कुल नया खेल है, उन्हें क्रिकेट सीखना भी होगा और जीत के लिए खेलना भी होगा। फिल्म की कहानी आशुतोष गोवारिकर ने लिखी थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी आमिर खान और क्रेसी सिंह ने। चुनौतीपूर्ण कहानी को फिल्म का रूप देने में कई चुनौतियां आई और आखिरकार ये फिल्म 15 जून 2000 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। देखते ही देखते साल 2021 सफलतम फिल्मों में

शुमार होने लगा। फिल्म लगान का और जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक खास मुकाम बनाया इस फिल्म ने। साथ ही मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद एकेडमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की कैटेगरी में नामांकित होने वाली फिल्म भी ये बन गई। गीत संगीत बहुत मधुर था। चलिए इस गीत की एक झलक सुनते हैं।

मायूसी के वक्त में करुण पुकार बनकर ऊपर वाले को पुकारने वाली ये प्रार्थना वाकई बहुत हिट हुई और साथ ही फिल्म लगान भी आज भी प्रासंगिक है और इसके गीत तो और भी धूम मचाते रहे हैं। फिल्म का संगीत दिया था ए आर रहमान ने, तो आइए अब सुनते हैं ये गाना।

उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और श्रीनिवास की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा यह गीत आपने सुना और हमने जैसा कि बताया था एआर रहमान का संगीत था इस फिल्म में। और अब अगर हम बात करें तो बात हो रही है उस फिल्म की जो जून में ही रिलीज हुई थी, 15 जून 2001 को, और काफी हिट हुई थी। ये फिल्म थी गदर। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित ये फिल्म शक्तिमान तलवार की कहानी पर आधारित थी, जिसमें ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा का ताना बाना बुना गया था। 1947 की पृष्ठभूमि में घटित होती घटनाओं के बीच तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी कैसे परवान चढ़ती है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया था। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, लिलिट दुबे और उत्कर्ष शर्मा ने। 25 बरस पहले रिलीज हुई ये फिल्म

इसके संवाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं और साथ ही इसके गीत भी अक्सर गुनगुनाए जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

कथावा गीत था और उत्तम सिंह का संगीत था। 2001 से अब चलते हैं 1976 की ओर। फिल्म चरस, एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने बनाया था। फिल्म में धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी का जादू सिर चढ़कर बोला और साथ में नजर आए अजीत, अमजद खान, अरुणा ईरानी और असरानी। नशे की तस्करी के काले पहलू को दर्शाती हुई ये फिल्म बहुत हिट रही और इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनते हैं ये गाना।

ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी की आवाज शुरू में गीत के आपको सुनाई दी होगी, और आनंद बख्शी का ही लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। 1976 की फिल्मों की बात हो रही है तो कई फिल्में इस साल रिलीज हुई थी, नागिन, लाला मजनू, कभी कभी, दस नंबरी, हेरा फेरी, चरस की तो हमने बात की अभी, फकीरा, कालीचरण, माँ, दो अनजाने, नहले पे दहला, शंकर दादा, बारूद, चिच्चोर, छोटी सी बात, ये सभी फिल्में काफ़ी हिट रही थी। हालांकि फिल्में तो बहुत सारी रिलीज हुई थी, लेकिन हम उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी भीड़ बटोरी थी। अब बात कर रहे हैं फिल्म बारूद की, जो 2 अप्रैल 1976 को रिलीज हुई थी। बारूद फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अशोक कुमार, ऋषि कपूर, शोमानंद, अजीत और रीना रॉय, और इस फिल्म का संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

बारूद फिल्म का ये गाना बना आज के मैटिनी शो की आखिरी पेशकश। अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

0: उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आमने सामने फिल्म के इस गीत से। मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ अगला गाना मस्ताना फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।
1: जब हम तुमको देखे हैं रिठेला, जब जब हम तुमको

शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल। आसरा फिल्म का ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यादों के महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। अब सुनते हैं अवधि लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग।

श्रोताओं, किसी भी समाज की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान होते हैं ये लोकगीत। ये पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक परंपराएं हैं जो लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ी रहती हैं, सामाजिक एकता को बढ़ावा देती हैं और जीवन के हर पड़ाव, जन्म, विवाह, त्योहार कोई भी हो, इन सभी में उल्लास और एक तरह का आनंद भरने का, रंग भरने का काम करती हैं। तो इसी क्रम में सुनते हैं श्रीकांत मिश्रा और साथियों के स्वर में ये गीत।

0: बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हेलो
3: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर।
4: माय नंबर इज
5: 7376804090।
6: लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804

श्रोताओं, हीट वेव से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि यदि गर्मी वाले समय विशेषकर दोपहर 12 से 3 बजे के मध्य सूर्य के सीधी रोशनी में जाने से बचें, नंगे पैर बाहर न निकलें, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के उपयोग से यथासंभव बचें, बासी भोजन का प्रयोग न करें, बच्चों और पालतू जानवरों को खड़े गाड़ियों में न छोड़ें, गहरे रंग के भारी तथा तंग कपड़े न पहने, जब बाहर का तापमान अधिक हो तब अत्यधिक शारीरिक परिश्रम का कार्य न करें, अधिक गर्मी वाले समय में खाना बनाने से बचें, रसोई वाले स्थान को ठंडा रखें और इसको ठंडा रखने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल दें, शराब, चाय, कॉफी, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक आदि का उपयोग करने से बचें।

नूतन पांडे के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये झूमर गीत। और श्रोताओं बता दूं कि अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 1 बजे होगी आपकी और मेरी मुलाकात कार्यक्रम हेलो अयोध्या में, तो मिलाना बिल्कुल ना भूलें। नंबर है 73 76 80 40 90।

0: अभी आप सुन रहे थे अवधि लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हेलो अयोध्या में आज आपका साथ है आपकी रेडियो दोस्त सविता का। तो सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और चलिए देखते हैं हमारे कौन से कॉलर हैं जो लाइन पर आ चुके हैं, करते हैं इनसे बातें। हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हाँ हेलो, अपना नाम?
1: मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते, अपना नाम बताइए।
1: अर्जुन कुमार सोनकर, छोटा रमना।
0: अच्छा, तो
1: जी मैडम,
0: अर्जुन जी अपने बारे में कुछ बताएंगे।
1: अरे मैं क्या बताए, बैठे हैं दुकान पे, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, सुन रहे हैं, कम से कम यही बताए तो
1: कुछ। प्रोग्राम तो आपका चल ही रहा है रेडियो पे।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आज कौन सा फिल्म आपने चुना है सुनने के लिए गाना?
1: चलिए भाई, 20 साल बाद।
0: 20 साल बाद कौन सा गाना?
1: जी
0: कौन सा गीत 20 साल का?
1: हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
0: ओके ठीक है, तो कॉल करने के लिए शुक्रिया और सुनिए अपनी पसंद का गीत।
1: जी मैडम, जी जी।

0: और देखते हैं हमारे कौन से श्रोता ने अब याद किया है हमको। हेलो
1: इतना प्यार।
0: हेलो,
1: जी।
0: हाँ, अपना नाम बताइए। आप तो बहुत हंस रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है हंसना। चलिए अपना नाम बताइए।
1: हंसता रहता हूँ मैम,
0: बहुत
1: जी
0: अच्छी
1: जी
0: बात
1: हंसता
0: है,
1: रहता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है हंसना। अपना नाम बताइए।
1: विशाल
0: विशाल, तो आपने हमें कहाँ से कॉल किया है, कहाँ
1: जी,
0: से आपने हमको फोन किया है?
1: रेडियो स्टेशन पे फोन किया
0: अरे, रेडियो स्टेशन के किए हैं आप रहने वाले हैं।
1: मुझे उतना नहीं पता है, आज मैं पहली बार रेडियो सुन रहा हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, आप सुन रहे हैं। तो आज आप किस फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: खलनायक मैम, खलनायक
0: खलनायक, ठीक है। कौन सा गीत?
1: नहीं खलनायक हूँ मैं
0: अच्छा, ठीक है। तो क्या करते हैं आप विशाल जी?
1: जी। मैं नेताजी का गनर, मैं मतलब नेताजी का गनर हूँ
0: अच्छा, ठीक है,
1: जी।
0: ठीक। तो सुनिए अपनी पसंद का गीत अपने रेडियो सेट पर।
1: थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी उम्र लग जाए।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: और दोस्तों, बातें करते हैं हेलो अयोध्या कार्यक्रम में आए अगले श्रोता से। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, नमस्कार, अपना नाम बताइए।
2: हमारा नाम अशोक कुमार गुप्ता।
1: अच्छा अशोक जी, अच्छा रुदौली से आपने कॉल किया है, तो क्या करते हैं आप?
2: सर किराना की छोटी मोटी दुकान करी
1: है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, किस फिल्म का? जी बताइए।
2: नदिया के पार,
1: नदिया के पार का कौन सा गीत है?
2: कौन दिशा में लेके चला रे, वो तो ही
1: ठीक है। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गड़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, AYODHYAAKASHVANI@gmail.com।
1: कार्यक्रम हेलो अयोध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और अब बातें करते हैं हमारे अगले श्रोता से जो कि आ चुके हैं लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी बताइए। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: हाँ, अपना नाम बताइए।
2: यमुना बोल।

0: अच्छा जमुना जी, क्या करते हैं आप? अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा, तो इस समय तो धूप बहुत तेज हो रही है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी, बहुत तेज धूप है।
0: हाँ, तो सब कुछ कीजिएगा, खेती बाड़ी सब देखिएगा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को बचा के। और ये बताइए कि किस फिल्म का गीत आज आप सुनेंगे?
1: सन्यासी है जी, मनोज कुमार की।
0: अच्छा, कौन सा गाना है?
1: गाना है चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चमटा मेरी चूड़िया दोनों साथ।
0: जी, समझ गई, ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: बात करिए क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है ना, तो बचाते हुए
1: हाँ, गर्मी तो बहुत।
0: हाँ हमारे जितने भी किसान भाई हैं या और भी लोग हैं सब थोड़ा काम करिए, काम करना ही पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा खुद का जो है ध्यान रख के। और ये बताइए किस फिल्म का गीत आप सुनेंगे आज?
1: संगीत फिल्म का गाना सुनना है।
0: संगीत का कौन सा गाना?
1: और अब्बा कोई तो बताए।
0: ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का गीत अपने रेडियो सेट पर।
1: जी धन्यवाद।

0: और चलिए हम भी देखते हैं हमारे अगले कौन से श्रोता आ चुके हैं लाइन पर। हेलो
1: जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते नमस्ते, अपना नाम बताइए।
1: सत्यम वर्मा, दरियापुर बंजारा, अम्बेडकर नगर से।
0: अच्छा अच्छा, तो क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कुछ बातें करना चाहेंगे?
1: करते हैं मैम।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, तो खेती बाड़ी करिए बहुत सावधानी के साथ।

0: और चलिए बात करते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से. हेलो.
1: हेलो, नमस्कार.
0: नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए.
1: मेरा नाम मोहम्मद राजी का, मैं बच्चा सुल्तानपुर जिला अयोध्या से बोल रहा हूँ.
0: अच्छा अच्छा, तो क्या करते हैं आप?
1: जी हम तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, वैसे तो घर का पूरा काम करते हैं, हमारे यहाँ फूल का रोजगार है.
0: बहुत अच्छी बात है,
1: काम होता है.
0: बहुत अच्छी बात है. ये बता दीजिए, समय तो ज्यादा नहीं है, किस फिल्म का गीत आप सुनेंगे?
1: ये दिल आशिकाना मूवी का नाम है और गाने के बोल है अल्लाह अल्लाह.
0: ठीक है, तो सुनिए अपनी पसंद का गीत अपने रेडियो सेट पर.

हेलो अयोध्या, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

0: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अपने श्रोताओं के नाम। तो अरविंद कुमार बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से, हीरामन शिंदे किशोर नगर अमरावती से, फागुराम यादव संबलपुर कांकेर से, फैसल इमाम हयात कॉलोनी अररिया बिहार से, विनोद कुमार यादव इंग्लिश फरका भागलपुर बिहार से, जी के परमार गांधीनगर सेक्टर 2 गुजरात से, विनोद मूडत उज्जैन बोरखेड़ा से, रवि कुमार राहुल कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से, रज्जाक मोहम्मद हनुमानगढ़ राजस्थान से, शेख जियाउर रहमान मानपुर।

साबित मुरादाबाद से मेरठकंठ से दिग्दर्शन गौड़, खोखरावाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, शिवाजी नगर वड़ाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन एले, शेरवाले स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, हैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, रियासत हुसैन सिद्दीकी, जसपुर उत्तराखंड से राधेश्याम शर्मा, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, विक्रम मालवी, गुलवालो तहसील आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से।

0: अरे हाँ हाँ सकीब, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सके जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
0: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: और भाई साहब क्या हाल है?
4: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
3: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
4: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
5: धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, कुटवा नारायण, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, दिलशाद हुसैन मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मसूरी कालपी वाली, नाना लाम से मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा बेरुणी से जसपुर, उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पंजाजी नावकर, सुरेश गगनेजा जलालाबाद वेस्ट से, रघुवीर नगर से दिलावर खान, लाहौरड़ा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर से विष्णु मिस्किन, नागपुर महाराष्ट्र से कमल स्वाहनी, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से उमा सिंह बोरसा, नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
1: नहीं अछूता हो
0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।

हुकुम करमरकर बेरड़ी मध्य प्रदेश से सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन साह गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मिस्किन पंचकुला चंडीगढ़ से तुलसीदास चौग मस्किन कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा आष्टी जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा गांव खरिया राड़ी सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी मारहरा दरवाजा एटा से नवी हसन अब्बासी धर्मेंद्र शिपा भोपालगढ़ राजस्थान से बीड़ शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे अरायन गांव श्रीगंगानगर राजस्थान से बनवारी जयपाल छुरी छत्तीसगढ़ कोरबा से लक्ष्मण सिंह राजपूत गांव भटनी मंदसौर मध्य प्रदेश से ईश्वर लाल मेहर बटिडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम गीतांजलि।

0: आगरा वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532221909।
2: कार्यक्रम का पहला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं कैलाश खेर की आवाज में।

0: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
1: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
0: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
1: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
2: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।

नुसरत फतेह अली खां की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत वडाली ब्रदर्स की आवाज़ में।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। अब से कुछ ही पलों में होंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2,00,000 से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और

0: इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
6: If you heard me earlier,
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।

0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अरियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के

जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो सेफेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोपहर समाचार के बाद एक बार पुनः आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी जगत।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: नारी जगत कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है, और आज आपके साथ हैं आपकी रेडियो सखी हिना कमर। आप सभी को मेरा नमस्कार। सखियों, आज है शनिवार और आज के दिन हम लेकर आते हैं आज का स्पेशल सेगमेंट हेलो सहेली, जिसमें हम अपनी सहेलियों से फोन कॉल के जरिए बात करते हैं। और सखियों, हमारी आज की बातचीत का विषय है प्रकृति आधारित मनोरंजन के लाभ और सावधानियां। जी हाँ सखियों, हमसे बात करने के लिए डायल कीजिए हमारा फोन नंबर 7376804090 और हमसे शेयर कीजिए अपना नजरिया। सखियों, देखते हैं हमारे साथ फोन पे कौन है। हेलो हेलो हेलो, लग रहा है हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है। सखियों, हम बात कर रहे थे कि प्राकृतिक आधारित मनोरंजन की। तो सखियों, प्राकृतिक आधारित मनोरंजन का मतलब है कि खाली समय में प्रकृति के नज़दीक, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताना, जैसे ट्रैकिंग करना, कैंपिंग करना, बागवानी करना, बोटिंग करना, पक्षी दर्शन करना या किसी पार्क में टहलना। सखियों, हम सभी जब कभी कभी शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव करते हैं तो ना अपने घर के आसपास किसी जगह घूमने जाते हैं। देखते हैं हमारे साथ फ़ोन पे कौन है। हेलो जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं?
3: मैम, हम कांटे से बोल रही हैं।
2: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी मैम
2: जी, अभी बता दीजिए कहाँ से बोल रही हैं।

0: काटे से, काटे से।
1: अच्छा काटे से बोल रही हैं। ये बताइए, देखिए
0: जी
1: आज हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम चल रहा है और आज की हमारी जो बातचीत का विषय है यह प्रकृति आधारित मनोरंजन के लाभ और उनकी सावधानियां। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं पार्क में या नदी के किनारे, तो ये कैसा होता है और हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या कहना चाहती हैं आप?
0: मैम, अच्छा लगता है।
1: अच्छा तो बहुत लगता है, बिल्कुल हम थके होते हैं जब कभी बहुत प्रेशर में होते हैं, घूमने चले जाते हैं बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं, क्यों?
0: क्या मैम,
1: अरे बहुत अच्छा लगता है, आपने कहा कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है, वाकई बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमको सावधानी क्या बरतनी चाहिए ये आप क्या कहना चाहती हैं इस पे?
0: इस साइड तो घाम बहुत तेज हो रहा है मैम,
1: हाँ
0: धूप
1: बिल्कुल
0: से बचना चाहिए
1: बिल्कुल, धूप से
0: और
1: बचना चाहिए।
0: प्यास भी लगती है मैम, नींबू पानी पीना चाहिए सबको।
1: जी, आपने देखिए हमें कॉल किया, हमसे बात की, अपने नज़रिया हमसे शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सखियों हम बात कर रहे थे प्राकृतिक आधारित मनोरंजन की, तो हम जब कभी कभी मानसिक थकान का अनुभव करते हैं तो अपने घर के आसपास बने किसी पार्क में टहलने चले जाते हैं या फिर नदी के किनारे घूमने चले जाते हैं, तो ऐसे यूं प्रकृति के साथ समय बिताना जो है हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सखियों जल्दी से डायल करिए हमारा फ़ोन नंबर 7376804090 और हमसे शेयर कीजिए अपना नज़रिया, देखते हैं कौन है हमारे साथ फोन कॉल पर। हेलो
2: हेलो
1: जी, कौन बोल रहे हैं?
2: जी,
1: लग रहा है फोन कट गई है इनकी। और सखियों डायल करिए हमारा नंबर 7376804090 और हमसे शेयर कीजिए अपना नज़रिया, हम सखियों से कहना चाहेंगे कि सखियों हमें कॉल करिए और अपना नज़रिया हमसे शेयर करिए। सखियों देखते हैं कौन है हमारे साथ फोन कॉल पर। हेलो
3: हेलो,
1: जी, कौन बोल रही हैं?
3: बोल
1: बिंदु जी कहाँ से बोल रही हैं? हेलो
3: हेलो,
1: जी, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं बिंदु जी?
3: बिंदु खंडारी बाजार से बोल रहे हैं, अयोध्या से।
1: जी, खंडारी बाजार से बोल रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और बिंदु जी देखिए कार्यक्रम चल रहा है हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम और आज का हमारा जो विषय है प्रकृति आधारित मनोरंजन के लाभ और सावधानियां, क्या कहना चाहती हैं आप? हेलो
3: हेलो,
1: जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैम अपने फोन से थोड़ा दूर, रेडियो से थोड़ा दूर हट जाइए, फिर आराम से बात करिए। हेलो
3: हेलो
1: जी,
3: जी
1: बताएं
3: मैम,
1: बताएं अपना नजरिया हमसे शेयर करिए कि आज जो हमारी बातचीत का विषय है प्रकृति आधारित मनोरंजन के लाभ और सावधानियां, क्या कहना चाहती हैं आप?
3: मैम घूमना फिरना होना चाहिए।
1: बिल्कुल होना चाहिए, सावधानियां क्या रखनी चाहिए हमको, ये क्या कहना चाहती हैं आप?
3: धूप धूप से बचना चाहिए।
1: जी, धूप से बचना चाहिए। बिंदु जी आपने हमें कॉल किया, हमारे साथ अपना नज़रिया शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सखियों जल्दी से डायल करिए हमारा नंबर 7376804090 और हमसे बात करिए, देखते हैं कौन है हमारे साथ फ़ोन कॉल पर। हेलो
4: हेलो, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, कौन और कहाँ से बोल रही हैं?
4: अनु पांडे गोंडा से।
1: कौन बोल रही हैं?
4: अनु पांडे गोंडा से।
1: गोंडा से बोल रही हैं अनी जी, बताइए। देखिए हमारा कार्यक्रम चल रहा है हेलो सहेली और आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक आधारित मनोरंजन के लाभ और सावधानियां, तो जब हम कहीं घूमने जाएं तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या कहना चाहती हैं आप?
4: मैम हम कहीं घूमने जाए, कहीं भी जाए, वो पार्क में जाए या अपने आस पास कहीं
1: जी जी
4: जो अपना छोटा सा गार्डन बना रखा है या उसमें जाए, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वजह से कोई प्रकृति को नुकसान नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है।
4: खाने पीने की चीज लेके जाते हैं तो हमको पॉलीथीन हुई, पानी का बोतल लेकर जाते हैं,
1: बिल्कुल
4: तो ये ना हो कि हम पानी पी के और वो बोतल ही फेंक दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने कि हमारी वजह से प्रकृति को कोई नुकसान ना होने पाए, हमें ये कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, और देखिए आपने हमें कॉल किया, हमसे बात की, अपना नजरिया शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ सखियों, देखिए हमारी सखियां हमें कॉल कर रही हैं और हमारे साथ अपना नजरिया भी शेयर कर रही हैं, तो जल्दी से डायल कर लीजिए हमारा नंबर 7376804090 और अपने साथ हमारा नजरिया शेयर, अपना नजरिया शेयर कीजिए। और हमारी आज की जो बातचीत का विषय है, प्रकृति आधारित मनोरंजन।

0: लाभ और सावधानियां। देखते हैं कौन है हमारे साथ फोन पर। हेलो हेलो, लग रहा है फोन कट गई है हमारी। सखियों, हम बात कर रहे थे प्रकृति आधारित मनोरंजन के लाभ और सावधानियों की। तो भाई हमारी, देखिए अभी सखी ने कहा कि कोशिश करनी चाहिए कि हमारी तरफ से प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। देखते हैं कौन है हमारे साथ। फोन कट गई है। सखियों, हमें कहीं भी प्रकृति के नज़दीक अगर हम जा रहे हैं ना, तो हमें मौसम की जानकारी ज़रूर ले लेनी चाहिए। जैसे हम मौसम कैसा रहेगा, बारिश तो नहीं होगी, आंधी तूफान तो नहीं आएगा, ये जानकारी हमें पता करते रहना चाहिए, तभी कहीं घूमने का प्लान बनाना चाहिए। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: नमस्कार मैम, सपना
0: नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रही हैं?
1: सिंह बात कर रही हूँ मैम, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अयोध्या।
0: सपना सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। देखिए आज हमारी
1: थैंक यू
0: जो
1: मैम।
0: जी कार्यक्रम हेलो सहेली चल रहा है, और आज की हमारी जो बातचीत का विषय है वो है प्राकृतिक आधारित मनोरंजन के लाभ और सावधानियां। तो क्या कहना चाहती हैं आप?
1: मैम प्राकृतिक है तभी तो जीवन है ना, प्राकृतिक ही नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ से रहेगा।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: कोई भी हो, कहीं पे भी जाए तो कूड़े कचरे का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो सफर करने में हो, ट्रेवल करने में हो। डस्टबिन अब हर जगह रहता है, तो कुछ भी खाकर फेंकना है तो डस्टबिन में ही डालना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे हम लोग आज यहाँ पर प्राकृतिक आधारित मनोरंजन की बात कर रहे हैं, तो जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं या नदी के किनारे घूमने चले जाते हैं या बोटिंग करने जाते हैं, तो और आप क्या कहना चाहेंगे हमारी सखियों से कि वो क्या सावधानी रखें?
1: सावधानियां ये होती है, जैसे मैं हम लोग बोटिंग करने के लिए जाते हैं तो बहुत ज्यादा गहराई की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: वो एंजॉय करना अपनी जगह है मैम, लेकिन अपने हर एक चीज को लिमिटेशन में रखना चाहिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए कोई चीज।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी। देखिए आपने हमारी सखियों को भी बहुत अच्छी बात बताई। सपना जी, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ सखियों, देखिए हमारी सखी हैं, उन्होंने अभी हमसे कहा कि आप जब भी जाएं, कभी बोटिंग करने जाएं, तो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। साथ ही लाइफ जैकेट जो हमें पहनने के लिए मिलती है ना, हमें वो भी पहनना चाहिए। देखते हैं कौन है हमारे साथ फ़ोन कॉल पर। हेलो हेलो हेलो, लग रहा है फ़ोन कट गया है। साथ ही सखियों, देखिए हम बात कर रहे हैं कि कभी भी हम प्रकृति के सानिध्य में जाएं, उसके साथ कहीं घूमने जाएं, तो कभी भी ऐसी जगह घूमने के दौरान अपनी सुरक्षा का सामान ज़रूर अपने साथ रखना चाहिए। कहीं हम हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो कपड़े, मौसम के अनुसार जूते, मौसम के अनुसार जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमें उसे ज़रूर साथ लेकर के जाना चाहिए। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो, लग रहा है फोन कॉल कट गई है हमारी। सखियों जल्दी से डायल करिए, हमारा फोन नंबर 7376804090, और हमसे बात करिए और हमारे साथ अपना नजरिया शेयर कीजिए। सखियों, हम अपनी सखियों से अभी और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये प्यारा सा।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सखियों हेलो सहेली लाइव फोन इन प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है और आज हमारी बातचीत का विषय है प्रकृति आधारित मनोरंजन के लाभ और सावधानियां। देखते हैं कौन है हमारे साथ फोन कॉल पर। हेलो हेलो शायद उन्हें हमारी आवाज़ नहीं मिल रही है। सखियों जल्दी से डायल करिए हमारा नंबर 7376804090 और हमसे शेयर कीजिए अपना नज़रिया। देखते हैं कौन है फ़ोन पर। हेलो हेलो
3: मेरा नाम गाना सुनना है वो
2: सखियो ये कोई हमारी सखी थी इनकी ये आवाज़ हमें सही से नहीं मिलती। देख रहे हैं देखें कौन है हमारे साथ फ़ोन कॉल पर। हेलो हेलो हेलो कौन जी कौन बोल रही हैं। सखियो आवाज़ नहीं आ रही है इनकी। हम लोग बात कर रहे थे कि जब कभी हम कहीं घूमने जाएं कभी तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हमारी बहुत सारी सखियों ने हमसे बताया कि हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सखियों जब हम कहीं जू में जाते हैं या किसी ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे कुछ जानवर होते हैं जंगली जानवर होते हैं जिनको जैसे जू में हम लोग घूमने गए तो हमें उनसे थोड़ा दूरी बना करके रखना चाहिए। देखते हैं कौन है फ़ोन कॉल पर हमारे साथ। हेलो
4: हेलो
2: जी कौन और कहाँ से बोल रही हैं।
4: जी मैं बजमी बोल रही हूँ नियामा से।
2: जी बजमी जी देखिए आपने हमारे कार्यक्रम में फ़ोन किया आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: और आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति आधारित मनोरंजन के लाभ और सावधानियों की। तो सावधानियों के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप?
1: जैसे मैं देख पा रही हूँ आजकल बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है
0: जी,
1: तो लोगों ने जल्दी जल्दी एसी लगवा लेते हैं और बाहर एसी तो अपना घर आप ठंडा कर लेते हैं, लेकिन बाहर उस पे नेचर पे कितना ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है।
0: बाहर
1: उसकी वजह से बाहर कितनी ज्यादा गर्मी होती है, लोग अपना तो घर ठंडा कर लेते हैं लेकिन बाहर वालों के बारे में नहीं सोचते हैं, इतना ज्यादा गर्मी बढ़ने लगती।
0: जी जी जी, देखिए ये हमारी सखी थी, इन्होंने हमें कॉल किया और सखियों जल्दी से डायल करिए हमारे नंबर 7376804090 और जो है हमसे शेयर करिए अपना नज़रिया। सखियों आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति आधारित मनोरंजन के लाभ और सावधानियां। जैसे हम ऐसी जगह कहीं घूमने जाएं जो मनोरंजन की जगह हो, जैसे नदी का किनारा है, पार्क है, पहाड़ी इलाका है, ऐसी जगह पर जब हम घूमने जाएं तो ऐसी जगह जाने के समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और या इनके क्या लाभ हैं? तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, सखियों डायल करिए हमारे नंबर 7376804090 और हमसे बात करिए और शेयर कीजिए अपना नज़रिया। सखियों हम बात कर रहे थे कि हमें वन्य जीवों से थोड़ा सा उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। जब सखियों एक बहुत ही ख़ास बात कि जब हम किसी जल स्रोत के पास जाएं, जैसे झरने के पास या नदी के पास, तो वहाँ जाते समय हमें थोड़ा स्पेशल सावधानी बरतनी चाहिए। और सखियों अभी हम अपनी सहेलियों की और भी कॉल लेंगे, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, सखियों हम बात करेंगे, उससे पहले आइए मिलते हैं आपसे एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।

0: और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
0: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: सखियों, एक बार हम फिर से हाजिर हो गए हैं हेलो सहेली लाइव फोन इन कार्यक्रम लेकर के, और सखियों देखते हैं हमारे साथ फोन कॉल पे कौन है। हेलो हेलो सखियों, जल्दी से डायल करिए हमारा नंबर 7376804090 और हमसे शेयर करिए अपना नजरिया। सखियों, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक आधारित मनोरंजन की, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो
4: हेलो
3: जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? हेलो सखियों, हम बात कर रहे हैं आज प्रकृति का आधारित मनोरंजन की। तो सखियों, प्रकृति के साथ समय बिताना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही सखियों, प्रकृति के साथ समय बिताने से जो हमारा स्ट्रेस लेवल है ना, वो कम होता है और हमारा मूड बेहतर होता है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो, लग रहा है कॉल ड्रॉप हो गई है। सखियों, हम बात कर रहे हैं प्रकृति का आधारित मनोरंजन की। तो प्रकृति के बीच जाकर टहलने से, दौड़ने से या साइकिल चलाने से हमारे शारीरिक सहन शक्ति और शारीरिक लचीलापन भी बढ़ता है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो, हमें आवाज़ नहीं आ रही है। सखियों, प्राकृतिक वातावरण में शुद्ध हवा तो मिल

मिलती ही है, साथ ही सुबह की धूप से जो ज़रूरी विटामिन डी होता है ना, हमें वो भी मिलता है। देखते हैं कौन है हमारे साथ फ़ोन कॉल पर। हेलो हेलो, सखियो प्रकृति के नज़दीक समय बिताने से हमारी नींद की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है।

0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: हम फैजाबाद से बोल रहे हैं।
0: फैजाबाद से कौन बोल रही हैं?
1: अर्चना डोगरे।
0: अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अर्चना जी, देखिए, आज हमारी जो बातचीत का विषय है, प्राकृतिक आधारित मनोरंजन के लाभ और उसकी सावधानियां, क्या कहना चाहती हैं आप?
1: आवाज क्लियर नहीं हो रही मैम।
0: देखिए, हमारा जो आज का कार्यक्रम चल रहा है लाइफ ऑन इन का प्रोग्राम में, तो आज हमारी बातचीत का विषय है प्रकृति आधारित मनोरंजन के लाभ और सावधानियां, क्या कहना चाहती हैं आप?
1: हेलो।
0: जी, लग रहा है इनको हमारी आवाज नहीं आ रही है। सखियों, अभी भी हमारे पास टाइम है, डायल कीजिए हमारे नंबर 7376804090, हमसे बात करिए। और सखियों, हम प्रकृति आधारित मनोरंजन की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे महत्वपूर्ण बात हरियाली और प्राकृतिक दृश्यों के बीच रहने से जो हमारा दिमाग है ना, वो सक्रिय होता है, हमारी सोचने की क्षमता बेहतर होती है। और यूँ कहते हैं ना कि तभी तो एक आर्टिस्ट और लेखक प्रकृति के दृश्यों के बीच रहकर ही पेंटिंग करते हैं और लिखते हैं। देखते हैं कौन है हमारे साथ फ़ोन कॉल पर। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। सखियो, हम बात कर रहे थे कि प्रकृति आधारित मनोरंजन के लाभ और सावधानियां। भाई, हम अगर सावधानियों की बात करें तो देखते हैं कौन है हमारे साथ फोन कॉल पर। सखियो, जब भी कभी हम बाहर घूमने जाएं, अकेले हों या ग्रुप के साथ जाएं, तो हमें हमेशा अपनी जानकारी, अपनी लोकेशन की जानकारी अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को देते रहना चाहिए। देखें कौन है हमारे साथ फोन पर। सखियों, जल्दी से डायल करिए हमारा फोन नंबर 7376808040, हमसे बात करिए, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो, फोन कॉल कट रही है हमारी। सखियों, हम चाहेंगे कि हमारी सखियां हमसे फोन करें और बात करें, क्योंकि हमारी ये सखियों का कार्यक्रम है। तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
1: हेलो।
0: जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं?
1: कैसे बोल रहा हूँ, मेरा नाम खुशी यादव है।
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: खुशी यादव, खुशी यादव, खुशी यादव।
0: देखें, ये हमारी किसी जो सखी का फोन था, और ये देखें कौन है हमारे साथ। हेलो, सखियों, हम बातचीत कर रहे हैं आज जो है प्रकृति आधारित मनोरंजन के लाभ और सावधानियों की। सखियों, सावधानी की हम बात करें तो अभी हमने बताया, या हमारी सखियों ने भी हमें बताया, कि जब भी हम कहीं जाएं तो हमें अपने जानकारी, अपने लोकेशन की जानकारी अपने घर वालों को देते रहना चाहिए। साथ ही हम अगर कहीं बोटिंग कर रहे हैं या नाव पे घूमने जा रहे हैं, तो हमें मौसम की जानकारी लेकर ही जाना चाहिए और ज़्यादा दूर तक नहीं जाना चाहिए। और अगर जो हमें लाइफ जैकेट मिलती है, उसे ज़रूर पहनना चाहिए। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
2: हेलो, नमस्ते
0: सखियों, ये हमारी, देखिए, सखियों का कार्यक्रम है। हम अपनी सखियों से कह रहे हैं कि हमारी सखियां इस कार्यक्रम में फ़ोन करें और हमसे बात करें। हमारा फ़ोन नंबर है 7376804090। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो, सखियों, हम बात कर रहे थे सावधानियों की। तो सावधानियों में देखिए, प्रकृति के साथ जितना मनोरंजन होता है ना, घूमना जितना मनोरंजक होता है, उसमें घूम के आना जितना हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, ज़रा सी भी लापरवाही ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तो कोशिश करना चाहिए, कहीं भी घूमने जाएं, कुछ भी करें, अपनी पूरी पूरी सावधानी के साथ जाना है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, फोन कट गई है इनकी। सखियों, देखिए, कार्यक्रम का समय अब समाप्त तो हो रहा है, लेकिन हम अपनी सखियों से कहेंगे अभी भी टाइम है, हमें कॉल करिए और हमसे बात करिए। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
2: हेलो,
0: सखियों, देखिए, कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। इसी के साथ अपनी रेडियो सखी हिना कमर को इजाज़त दीजिए।

वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब सुनते हैं केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के शेष कार्यक्रम।
1: सदाबहार नखमे कार्यक्रम आज बस यहीं तक, दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
2: मन चाहे गीत,
3: मन चाहे गीत,
2: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

0: आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म दाग के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनाथ गांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दाग का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।
1: मेरे दिल में आज

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है। सुनना चाहते हैं रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रचक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

फासलों की खुशबुओं में महकती नजदीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना, और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में।

गीत में छुपा गुनगुनाता हुआ ये राज किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित के स्वरों में आपने सुना। एम जी हशमत के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

तिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवरलाल फिल्म से सुना और अब अगला मनचाहा गीत बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोक झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ, सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कौंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और

रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

दिल के सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: मन चाहेगी यह है विविध भारती। नाट्य तरंग,
1: आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज, ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन,
1: इस पर दया कीजिए।
0: अरे, ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
3: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है, लीजिए, मैंने अपना बाण लौटा लिया।
4: पूर्व वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
3: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
3: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन, मेरा नाम शारंग्रव है।
4: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
3: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
4: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहाँ पधार कर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
3: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर?
4: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
3: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला?
4: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
3: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है,
4: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
3: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
4: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों फड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। क्या रूप, क्या सौंदर्य है। आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं, पर लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।

0: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
1: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
2: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
0: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
2: लताएं भी रूठती हैं क्या?
0: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूठती भी है और प्रसन्न भी होती है, समझी?
1: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
0: क्या समझी है तू?
1: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
0: वो कैसे?
1: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
3: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या, शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से।
0: अरे अनुसुईया, ओह सरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांध दी है इस प्रियंवदा ने।
1: ए मुझे क्यों दोष दे रही है?
0: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
1: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
3: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
0: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूँ?
1: तेरे मुंह से तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
0: परिहास ना कर।
1: अच्छा नहीं करती, बता।
0: देख वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई। नहीं
1: तेरी तरह
0: फिर परिहास।
1: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
0: हाँ बता।
1: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
0: थत, तेरा तो सिर घूम गया है।
1: सच, मैंने अपने कानों से सुना है।
0: अच्छा,
1: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
2: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
0: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
4: अरे
0: भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग। अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
1: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
2: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
1: हाँ वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
0: अरे बचाओ, बचाओ ना।
3: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
5: पृथ्वी पर पुरुवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
1: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
2: आपके आते ही भाग भी गया।
1: आप खड़े क्यों हैं आर्य, विराजिए ना।
2: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
5: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
1: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
2: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
5: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठिए ना आप लोग भी।
0: ना तुम लोग बैठो, मैं भी।
1: अब बैठ भी जा।
0: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
1: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
2: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
5: अब क्या बताऊं इन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूँ, पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूँ।
1: आज यदि पिता कण्व यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
5: और ही ढंग से?
2: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते, क्यों शकुंतला?
0: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
5: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
1: क्यों नहीं, इसका

0: नाम है शकुंतला।
1: बहुत मीठा है इसका गला,
0: करती रहती है सबका भला,
1: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
0: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है,
1: कुलपति कणु की सबसे लाडली बिटिया है।
2: किंतु कुलपति कणु तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
0: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य, वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
2: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
1: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा।
2: फिर
1: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया मेनका के उस मादक रूप को देखकर।
2: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
0: किंतु क्या आर्य?
2: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
0: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य, पिता कण्व तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
3: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
0: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
1: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
2: वृक्षों को सींचने का ऋण?
0: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
1: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
2: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
0: आप
2: ये लीजिए
0: अंगूठी। किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
1: आपके पास ये अंगूठी?
2: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
0: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
1: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
2: मैं आभारी हूँ।
4: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं, सावधान सावधान।
2: ओह, लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आए हैं।

0: क्योंकि यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चली।
1: हाँ हाँ, चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
2: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
1: चलो शकुंतला। चलो
2: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं, किंतु तो मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा। शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तुमसे ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो, प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो, भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, गधा घोड़ा बैल मक्खी मच्छर कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है, शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है, अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है, आंखें

0: छोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव?
0: तुम कैसे समझोगे, अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है।
0: भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूँ माधव, अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूँ।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज।
1: किंतु माधव, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: हैं? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेश क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
0: विशेष बात?
1: हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
0: अप्सरा की कोख से? और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहाँ भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूँ मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहाँ नहीं है। उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आर्य। अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक।
2: आज्ञा महाराज।
1: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहाँ ले आए।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूँ।
2: आर्य की जय हो। महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहाँ सब कुशल तो है?
2: वहाँ सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
1: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहाँ भेजो रेवतक।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश?
2: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
2: आज से चार दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव।
4: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
1: एक काम हो सकता है माधव,
0: मैं यहाँ राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं।
1: नहीं माधव, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
0: मैं तुम्हारे स्थान पर?
1: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम्हें पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
0: ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
1: और हाँ, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहाँ तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
0: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
1: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
0: कहिए महाराज।
1: यही कि मैं यहाँ तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूँ, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
0: ठीक है, जब तुम झूठ पतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा।
1: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
0: जो आज्ञा महाराज।
1: जाओ युवराज।

0: प्यारी पवन चल रही है, अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवता, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: इसी से पूछकर देखें?
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवता, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो। इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं, तभी से
2: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
1: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
0: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
2: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
1: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
0: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
2: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
0: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
2: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
0: वो कैसे?
2: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
0: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
2: मुझे एक उपाय सूझा है।
0: क्या?
2: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं।
0: फिर
2: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
0: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
2: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
1: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
0: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
1: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
0: क्या शकुंतला?
1: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
0: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
2: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोक

0: हो सकती हूँ भला?
1: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
0: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
1: किंतु क्या शकुंतला?
0: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
1: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
2: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
0: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न कर

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं।

0: चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारतीय सुनने वालों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
1: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
2: जरूर,
1: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशंस आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
2: अन्ना जी के सिवा और वसंत देसाई के सिवाय।
1: अच्छा,
2: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं।
1: अच्छा,
2: गाया मैंने।
1: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
2: अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
1: जी जी, उनका
2: उसका नाम था। तो हम शो करते षण्मुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग। तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के। यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया। तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ, तो आपके गले में नहीं आई, तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना, ऐसे गाओ, चलेगा। अन्ना जी नहीं, नहीं नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा,
1: अन्ना जी मतलब
2: श्री रामचंद्र जी। तो षण्मुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पे करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे।
1: अच्छा।
2: तो थोड़ी देर एनर्जाइजेशन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दिया, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
1: अच्छा।
2: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है, नाम नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी।

0: ने ही लिखा था
1: जी, जी,
0: वो
1: जी.
0: पूरा रिकॉर्ड भी रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एच एम वी में.
1: अच्छा.
0: तो उसमें वो थी, छोटी थी.
1: हुँ.
0: तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी.
1: Okay.
0: एक समय काली पास सुर है तो हाँ. खर्च के जो सुर होते हैं
1: हाँ.
0: आवाज आती ही नहीं थी गले से. तो उन्होंने वो ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब. तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल.
1: हाँ.
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं नहीं वो नहीं, तू घर जा सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना. तो वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस.
1: जी जी,
0: बस ये दोनों में फर्क था, बसन जी और अन्ना जी.
1: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है, उसमें से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों से,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ। तो समझ में आता है
1: हाँ।
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं, वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ। देखिए, आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, वसंत जी का म्यूजिक था और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी, वो दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा।
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: तो
1: मैं बहुत ये दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ हमारा, तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया, लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से, तो उन्होंने मुझे ये कहता था जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
0: अच्छा।
1: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा वो आप आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा, आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफ कोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
0: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नैयर साहब का,
1: नैयर साहब का,
0: क्या बात क्या बात,
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी, लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत,
0: ये गाना सुन लिया।

0: शुक्ला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें, ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए, और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अंबा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ पुराना कोई फिल्म का, और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ।
1: तो लोग एकदम ऐसे, अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा,
1: अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे, और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उनके मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
0: अच्छा।
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था, मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला अंबा वो गाई है, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं वो मेरी है तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहाँ के लोकल लोग बहुत खुश होते थे,
0: अच्छा।
1: उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना,
0: हाँ।
1: तो मस्त उनको मजा आता था सुनने में।
0: क्या बात।
1: उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको बताया कि
0: बिल्कुल,
1: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे,
0: हाँ।
1: बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका
0: फोल्डिंग
1: स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता
0: अच्छा,
1: था
0: अच्छा, कटआउट बहुत
1: बड़ा कटआउट बनाया था,
0: हाँ, हाँ।
1: तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, था पत्रे का बनाया था
0: जी, जी, जी।
1: मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दत्तर और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था। तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है,

0: मंसूर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड उसको हम साइक्लोरामा डालते थे।
1: अच्छा।
0: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
1: है,
0: ऐसा लगता था।
1: अच्छा।
0: तो ऐसा भास होता था लोगों को। तो एक आदमी बहुत गुस्सा होके आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को। मतलब क्या क्या हुआ? मेरी तो जहां तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आप अच्छा गाने की। तो बोले नहीं नहीं, वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ।
1: अच्छा।
0: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा।
1: क्या बात।
0: लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते सामने ऐसा गाना, फिर वो शांत हो गया।
1: श्रोताओं की बात निकली है
0: जी,
1: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में, गांव में शोज किए हैं और विदेशों में भी किए हैं। हर शहर का श्रोता अलग होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और शुरुआत में नहीं, लेकिन अनुभव से आपको मालूम होना चाहिए कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं, एक साल लगो पाठ पांच छह शांत धीमे गीत, फिर लोग हाँ करके सामने सामने ये करते हैं।
1: अच्छा, अच्छा।
0: फिर दो गाने के बाद ये रात को डा सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप समझना चाहिए, वो सिखा के नहीं आती बात। और जहाँ तक पहली बार भी गए किसी शहर में, किसी गाँव में, छोटे से गाँव में भी, तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार के गाने चाहिए।
1: अच्छा।
0: तो होने से ज्यादा अच्छा होता है।
1: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है
0: फर्क? नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे।
1: अच्छा।
0: ये है अच्छा लोग, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं, तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे। पहला बमिला भी अच्छे गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके।
1: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
0: वो रफी साहब का गाना एक डुगाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे
1: जी, जी,
0: तो वो आगे आके उनको उसको एक बोलते ना, मैं बताती हूँ आपको। रफी साहब बोले शुरू करते थे
1: जी।

0: जानी इसकी अरे परसो भी रहेगा अरे तरसो भी नहीं, क्या जानी भाई आप इतना के पूना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते
1: जी जी जी तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।

0: शुक्ला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा ना।
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और हाँ, स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है,
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी, जी।
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना,
0: हाँ,
1: ये होता है, ये ठपका दोष आता है उनके ऊपर, इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं इसमें खुश थी, मैं लोगों को आमने सामने मेरा जो मुझे दाद मिलती थी लोगों की, तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश थी। और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि ऐसा होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा। एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा ये वो डांस वो, ये सब नहीं, अच्छी तरह से भी करो तो फिर लोगों को पसंद। तो पूना के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने महाराष्ट्र को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो बस वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी है, दूसरा कोई कहने की जरूरत ही नहीं है।
0: शो में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो तो
1: जरूर,
0: सवाल ही नहीं, बहुत सुंदर लगता है, क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग है और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी ज्यादा नाम मुझे याद नहीं।
0: प्राइवेट शोज भी होते,
1: प्राइवेट शोज भी होते थे, कंपनी के लिए किसी कंपनी के लिए बहुत शो हुए।
0: अच्छा।
1: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियल मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे, नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट किया।
0: जी जी। प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए हैं, सबका अपना अलग अंदाज होता है, अपना स्टाइल होता है, ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया, सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और उनकी विशेषता होती है, फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी, शमशाद बेगम जी के प्रस्तुत, वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, किन कंपोजिशंस में ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
1: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा।
1: अभी आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है।
0: अच्छा।
1: मेरी राय हो

0: भी वो शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें अगर जो म्यूजिक भी था बीच का, वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा, इस तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है, ऐसा चिल्लाते थे जरा भी। मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ, मेरा अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है, उन्होंने शुरुआत करियर की मेरे शो से की थी।
1: अच्छा।
0: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचेरे गाने
1: जी, जी।
0: तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और सुखे सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो नंदूरवार करके गांव है छोटा सा दुलिया के पास
1: जी।
0: तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया। मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको क्लासिकल का ज्ञान था, तो नहीं वो लास्ट में जो ताने है वो उसने नहीं लिया, वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, आमिर खान साहब की गाई हुई है वो। ओ, लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए है मुकरी, तो उतना भी उसको मालूम पड़ा, म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए पुराने जो गाने बराबर उनको ए करके चिल्ला देते वहां से।
1: क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार सुना है, उनके दिमाग में वैसा वो सुनना चाहते हैं।
0: अभी ये गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, टरा टरा टरा, वो आना ही चाहिए ऊपर, ये तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना, इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों को
1: जी। ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं
0: जी,
1: उनकी नजर से एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है,
0: नहीं है, सही बात।
1: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
0: एक तो रिहर्सल, बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है, अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20-25 शो हुआ करते थे, वही, और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए, नहीं तो आज ये ढोलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का। तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था सालों साल तक
1: जी।
0: अभी मैंने 2023 को एक शो किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, शो करना अभी, गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल से, तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करे, तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
1: अच्छा
0: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नहीं थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी, लेकिन एक काल के हिसाब से तुमसे जो बदली हो जाएगा
1: जी।
0: तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का, उसमें एक रिहर्सल और शो
1: जी,
0: बस दूसरी रिहर्सल नहीं, एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी होगा जी। तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी 2-3 थे म्यूजिशियंस, एक संजय मराठे करके है
1: जी।
0: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
1: जी।
0: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है।
1: अच्छा।
0: तो ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल, तो एक रिहर्सल और शो
1: जी,
0: लेकिन
1: जी।
0: फिर भी लोगों ने पसंद किया इसको, शो को।
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मांडके बोलूंगी, विनय मांडके
1: जी जी। मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मांडके जी की आवाज हम सुनते हैं
0: जी,
1: तो
0: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे, बहुत सारे जिंगल गाए उसने, और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज परफॉर्म होता है वो था, बहुत सारे हल्की बुल्की बातें भी करने का बीच में
1: अच्छा।
0: मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे
1: जी।
0: दिस नॉट दैट, तो उसमें कोरस था तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के।
1: अच्छा।
0: तो ये कुछ कुछ कुछ कुछ बीच में अशोक जी इतने एक दाई अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा। फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब वैसा वो मजा आया।

0: लगे। बहुत अच्छे
1: फिर
0: से
1: एक गाना था अन्ना जी का, भोली सूरत दिल के खोटे, नए जमाने की नारी, नए जमाने की नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली तो ये बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी मतलब वो ठीक था, लोगों को भी मजा आता,
0: मस्ती के मूड में
1: मस्ती के
0: हमेशा रहते थे।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे, लेकिन विनय जो अकेला संभालता छो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसको, बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब था, अच्छा गाता।
1: प्रमिला जी, अब गाना सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं, कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए पड़वा के शो, वसंत दादा पाटिल, शंकर राव चौहान और जो कुछ, विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए, वो बड़ा शो हुआ करता था, और तो मैं किसी को बुलाती थी
1: जी,
0: या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास

0: पास गई थी, उनके घर में गई थी, हाँ। प्रभु कुंज में, तो उसके सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पाली। सामने दर्शन हुआ साक्षात। तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके, आपने कैसे आना किया, कशा कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये। तर मला दीदी, माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा,
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे, लेकिन वो बाहेरगाव जाने वाली थी,
1: अच्छा, नाही आहे।
0: फिर मुझे पूछते की कसं भाऊ तुम्ही असे प्रोग्राम करता, एवढे प्रवास करायचा, परत गायला उभं राहायचं कसं करता, म्हटलं नाही अभी आदत हो गई है, हो जाता है। मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी,
1: हाँ।
0: कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम
1: था उनको। क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके गाए हैं।
0: हाँ जी।
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ,
0: वो मैं शायद

0: निर्मला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ा ला पिकला आंबा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में शामिल होना
1: बहुत ही जरूरी था, मस्ट।
0: और भी एक तो पहले हम उसकी झलक सुनेंगे
1: जरूर,
0: और फिर लावणी की भी बात करेंगे।

0: pauna, pauna, pauna zara thamba, oh, pauna zara thamba, arghe padala piklai amba, alavai padala piklai am, honitvag padala piklai amba. कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर फिर ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी जी।
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन, तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पड़ाल पिला मैं बोलूंगी अम्बा आप बोलेंगे।
1: अच्छा।
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर अरे क्या कर रहे हो आप, अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से, फिर जोर से एकदम जो जोर लगा के अम्बा आता था सामने से, मजा आता था उनको भी थोड़ा सा, हमने भी कुछ किया उनको भी शायद।
1: प्रमिला जी, आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी, तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ का कोई गाना आप उन्हें जरूर सुनाया करती
0: थी। हाँ।
1: और अपने लिस्ट में
0: कनाडा गाना सुनाती हूँ।
1: जी जी जरूर,
0: मेरी लड़की बैठे ना मतलब खुश हो जाएंगे।

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि क्या,
1: अरे बाप रे, गुजराती तो वही गाना था।
0: हाँ हाँ।

0: ये गाना बहुत दरे पैदा। और उधर गुजरात के एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे। तो उधर एक एरिया है सूरत में, मां जब सब काठियावाड़ी ने वो झबला पहनते हैं शॉर्ट, वो पहन वाला बैठे थे, वो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए, ए प्रेमिला बेन नवो पिक्चर लो गाएं गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ। तो मैंने उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर, इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उसमें। तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ बोलना।
1: 1975 में जो शुरुआत हुई उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फेहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, है ना, और आखिरी शो जब किया और तब की जो उस प्रोग्राम उस शो की जो लिस्ट थी,
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें। अच्छा? जो लोग पसंद करते थे।
1: अच्छा,
0: हमारे लिए नहीं। हाँ? लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर उधर, लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरी पसंद के या लोगों की पसंद के पहले से थे।
1: अच्छा,
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के लिए। लेकिन एक कवाली जो मैंने बोली, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, पेपाड़ा ला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की, वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी।
1: अच्छा।
0: उनके गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं, वही गाने चाहिए लोगों को। बहुत मजा आता,
1: बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन करके।
0: हाँ जी,
1: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो कौन सा गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये कर्म है कि आज आप यहाँ पर
1: हरी और मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़न से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
2: साथियों नमस्कार, आपकी ये रेडियो दोस्त समीक्षा मिश्रा लेकर हाजिर है आज का युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों आज चर्चा होगी एक नहीं बल्कि तीन विषयों पर। जी हाँ, आज है 16 मई और आज हम करेंगे चर्चा सिक्किम स्थापना दिवस, शांतिपूर्वक एक साथ रहने का दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर। उसके बाद हमारी धरोहर में हम बात करेंगे हम्पी के स्मारक समूह की और आर्थिक जगत में बात होगी अवसर लागत की। हीट वेव में बात करेंगे इमरजेंसी किट की, साथ ही होगा मधुर गीत संगीत और आपका और मेरा साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों 16 मई भारत के राजनीतिक मानचित्र के लिए एक ऐतिहासिक तारीख है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बना था। आजादी के बाद 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक संधि हुई थी जिसके तहत सिक्किम भारत का एक रक्षित राज्य बना। भारत इसकी रक्षा, विदेश नीति और संचार की देखरेख करता था, जबकि आंतरिक शासन वहां के राजा, जिन्हें चोग्याल कहा जाता था, उनके हाथ में था। 1970 के दशक की शुरुआत में वहां की जनता ने राजशाही के खिलाफ और लोकतंत्र के लिए आंदोलन शुरू कर दिए। 1974 में सिक्किम में पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए जिसमें सिक्किम नेशनल कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की। मित्रों इसके बाद भारतीय संसद ने 35वां संविधान संशोधन पारित किया जिससे सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा मिला, लेकिन पूर्ण विलय की मांग जोर पकड़ती रही। 6 अप्रैल 1975 को सिक्किम की सेना को निहत्ता कर राजमहल पर कब्जा किया गया। इसके बाद एक जनमत संग्रह कराया गया जिसमें सिक्किम की 97.5% जनता ने भारत के साथ विलय के पक्ष में वोट दिया। जानते हैं जनता की इच्छा का सम्मान करते हुए भारतीय संसद ने 36वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। 15 मई 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस पर हस्ताक्षर किए और 16 मई 1975 में सिक्किम पूर्ण रूप से भारत संघ का हिस्सा बन गया। तब से हर साल 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है। साथियों हर साल 16 मई को शांतिपूर्वक एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विविधता में एकता, सहिष्णुता और एकजुटता को बढ़ावा देना है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 8 दिसंबर 2017 को एक संकल्प पारित करके की गई थी। दोस्तों इसके बाद पहली बार यह दिवस 16 मई 2018 को मनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दुनिया को युद्ध से बचाना है, लेकिन दोस्तों आधुनिक समय में बढ़ रहे धार्मिक असहिष्णुता और राजनीतिक मतभेदों को देखते हुए ऐसे खास दिन की जरूरत महसूस हुई जो समाज को, हर वर्ग को एक साथ लाने पे जोर दे। अब चलिए जानते हैं इसके कुछ मुख्य लक्ष्य। पहला है सुलह। यह दिन उन समुदायों के बीच बातचीत और सुलह पर जोर देता है जो संघर्षों से गुजरे हैं। भेदभाव का अंत भी इसका एक लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र इस दिन के माध्यम से सरकारों और नागरिक समाज को प्रोत्साहित करता है कि वे लिंग, भाषा, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर होने वाले भेदभाव

FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हुए हैं।

भेदभाव को खत्म करें। सतत विकास भी इसका लक्ष्य है। शांति के बिना विकास संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, यह दिवस यूएन के 2030 के सतत विकास लक्ष्यों का भी एक हिस्सा है। दोस्तों, यह दिन हमें याद दिलाता है कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है जहां हर किसी की भागीदारी जरूरी है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मना रही है। यह दिवस रोशनी के वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और चिकित्सीय महत्व को रेखांकित करता है। 16 मई की तारीख को एक बहुत ही विशेष वैज्ञानिक उपलब्धि के कारण चुना गया है। दोस्तों, 16 मई 1960 को भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमैन ने पहली बार लेजर का सफल संचालन किया था। लेजर तकनीक ने आज चिकित्सा, संचार और मनोरंजन की दुनिया को बदल दिया है। साथियों, इस दिवस की घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई थी। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की सफलता के बाद घाना, मेक्सिको, न्यूजीलैंड और रूस जैसे देशों ने मिलकर इस वार्षिक दिवस का प्रस्ताव रखा। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने इसे मंजूरी दी और पहली बार यह 16 मई 2018 को आधिकारिक तौर पर मनाया गया। यूनेस्को इस दिन के माध्यम से दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकाश की तकनीक का उपयोग विकास के लिए करें। यह दिन विज्ञान और मानवता के जुड़ाव का प्रतीक है। दोस्तों, अब बारी है एक प्यारा सा गीत सुनने की, फिल्म भूल भुलैया 3 से, जिसे आवाज दी है सोनू निगम ने। गीतकार है समीर और संगीतकार है अमाल मलिक और प्रीतम।

0: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आँखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आँखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 7800372222।
1: दोस्तों, इस अंतराल के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। अब बारी है हमारी धरोहर भाग की, जिसमें आज हम बात करेंगे हम्पी के स्मारक समूह की। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह की कल्पना की है जहां पत्थर बात करते हैं, जहां हर खंडहर के पीछे एक साम्राज्य की भव्यता छिपी है? जी हाँ, आज हम आपको लेके चलेंगे कर्नाटक के वेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे उस शहर की सैर पर जिसे दुनिया हम्पी के नाम से जानती है। 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित यह जगह सिर्फ स्मारकों का समूह नहीं बल्कि मध्यकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की गूंज है। हम्पी का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है, जिसे तब किष्किंधा नगरी कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, इसकी असली चमक बढ़ी 14वीं शताब्दी में, जब हरिहर और बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। कल्पना कीजिए ऐसे शहर की जहां की मंडियों में हीरे जवाहरात कागज की तरह बिकते थे। पुर्तगाली यात्रियों ने तो इसे उस समय दुनिया के सबसे खूबसूरत और समृद्ध शहरों में से एक बताया था। लेकिन दोस्तों, 1565 में टेलीकोटा के युद्ध के बाद इस वैभवशाली शहर को लूट लिया गया और यह खंडरों में तब्दील हो गया। पर कहते हैं ना, कला कभी नहीं मरती। चलिए अब चलते हैं हम्पी के उन गलियारों में जहां आज भी स्थापत्य कला का जादू बिखरा है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी का सबसे पुराना और पवित्र मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का गोपुरम शिखर आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ की खास बात है दोस्तों, एक दीवार पर पड़ने वाली गोपुरम की उल्टी परछाई, जो प्राचीन इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। विट्ठल मंदिर और पत्थर का रथ, क्या आपने 50 रुपए के नोट पर वह पत्थर का रथ देखा है? यह वही है। विट्ठल मंदिर परिसर अपनी बारीक नक्काशी के लिए मशहूर है, साथ ही यहाँ का संगीतमय स्तंभ। क्या आपने कभी सुना है कि पत्थर भी गाते हैं? विट्ठल मंदिर के 56 स्तंभों को थपथपाने पर 7 सुरों की आवाज आती है। दोस्तों, अंग्रेजों ने तो यह देखने के लिए स्तंभ काट दिए थे कि अंदर कोई धातु तो नहीं, पर अंदर सिर्फ पत्थर ही मिला। और यहाँ हजारा राम मंदिर की दीवारों पर पूरी रामायण उकेरी गई है। सिर्फ मंदिर ही नहीं, हम्पी का रॉयल सेंटर भी अद्भुत है। लोटस महल भी यहाँ काफी मशहूर है, जहाँ कमल की पंखुड़ियों जैसा आकार और इंडो इस्लामिक वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ का हाथी अस्तबल भी बहुत ही मशहूर है दोस्तों, जहाँ गुंबददार कमरों वाली यह विशाल संरचना देखने को मिलती है, जिसमें विजयनगर की सेना कितनी भव्य थी।

यह आपको देखने को मिलेगा। आप यहां जाइएगा तो महानवमी डिब्बा जरूर घूमिएगा। हम्पी का हर पत्थर एक कहानी कहता है मित्रों, बहादुरी की, कला की, अगर उस वैभव की जो उस समय की धूल में तो दब गया था पर मिटा नहीं। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं या फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो हम्पी आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। दोस्तों अब बारी है आर्थिक जगत भाग की। आज हम बात करेंगे अवसर लागत की। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप जिंदगी में कोई एक चीज चुनते हैं तो आप अनजाने में किसी दूसरी चीज को ना कह रहे होते हैं? मान लीजिए आज शाम आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप थिएटर जाकर फिल्म देखें या फिर घर पर बैठकर अपनी किसी स्किल्स पर काम करें या पढ़ाई करें। अगर आप फिल्म देखने जाते हैं तो आपने सिर्फ टिकट के 300 रुपए खर्च नहीं किए बल्कि आपने वो 3 घंटे भी खर्च किए हैं जो आप अपनी तरक्की में लगा सकते थे। मित्रों अर्थशास्त्र की भाषा में इसी छोड़ी गई चीज को अवसर लागत कहते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अवसर लागत है क्या। इसकी सबसे सटीक परिभाषा है, एक विकल्प को चुनने के बदले छोड़े गए दूसरे सबसे अच्छे विकल्प की कीमत। मित्रों जब आप विकल्प ए को चुनते हैं तो विकल्प बी से मिलने वाला फायदा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत बन जाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक ये है कि अवसर लागत का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता, यह समय, मानसिक शांति या भविष्य का कोई बड़ा लाभ भी हो सकता है। इसे मापने का सीधा सा फॉर्मूला है मित्रों। अवसर लागत निकालने के लिए हम अगले सबसे अच्छे विकल्प का लाभ में से चुने गए विकल्प का लाभ माइनस कर देते हैं यानी घटा देते हैं। चलिए इसे किताबी बातों से बाहर निकालकर असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप इसे FD करा दें जहां आपको साल का 7% ब्याज यानी 7,000 रुपए निश्चित मिलेगा, या फिर शेयर बाजार में निवेश करें जहां आपको उम्मीद है कि 12% रिटर्न मिलेगा। अगर आप सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और FD कराते हैं तो आपकी अवसर लागत वो 5% अतिरिक्त मुनाफा है जो आप शेयर बाजार से कमा सकते थे। यही नियम व्यापार पर भी लागू होता है। मान लीजिए मित्रों एक किसान के पास 1 एकड़ जमीन है, वह उस पर गेहूं भी उगा सकता है और आलू भी। अगर वह गेहूं उगाता है तो मित्रों आलू की वो फसल जो वहां हो सकती थी वह उसकी अवसर लागत है। व्यापारियों के लिए यह समझना इसलिए जरूरी है ताकि वह देख सकें कि उनके संसाधन सबसे ज्यादा मुनाफा कहां दे रहे हैं। जब एक छात्र कॉलेज जाकर 3-4 साल पढ़ाई करता है तो उसकी लागत सिर्फ उसकी कॉलेज फीस नहीं होती बल्कि वो 4 साल में जितना कमा सकता था वो सैलरी भी होती है। लेकिन वो पढ़ाई को इसलिए चुनता है क्योंकि वो जानता है कि पढ़ाई के बाद उसकी कमाई की क्षमता बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि जब आप आज रात सोशल मीडिया पर 2 घंटे बिताते हैं तो उसकी अवसर लागत आपकी नींद हो सकती है। पैसे का तो दोस्तों हम हिसाब रखते हैं पर समय का अवसर लागत हम भूल जाते हैं। अवसर लागत हमें यह नहीं सिखाती कि हमें हमेशा पैसे के पीछे भागना चाहिए बल्कि दोस्तों यह हमें सचेत निर्णय लेना सिखाती है। जब भी आप कोई बड़ा फैसला लें, चाहे वो नई कार खरीदना हो, नौकरी बदलना हो या निवेश करना हो, खुद से बस एक सवाल पूछें, इस चुनाव के बदले मैं क्या छोड़ रहा हूँ और क्या वो छोड़ने लायक है। अगर आपको छोड़ी गई चीज की कीमत चुनी गई चीज से कम लगती है तो आपका फैसला सही है। दोस्तों अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत फिल्म वेलकम से, जिसे आवाज दी है आनंद राज आनंद और श्वेता पंडित ने। गीतकार हैं अंजान सागरी और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

दोस्तों पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है और भारतीय मौसम विभाग IMD ने कई हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं है, आपके पास एक हीट वेव इमरजेंसी किट होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि इस किट में क्या-क्या होना अनिवार्य है।

0: दोस्तों सबसे पहले तो हाइड्रेशन टूल्स होना अनिवार्य है। सिर्फ सादा पानी शरीर से निकले इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई नहीं करता। अपनी किट में ORS के पैकेट, ग्लूकोज और नमक चीनी का घोल जरूर रख लें। अगर चक्कर आए या डिहाइड्रेशन लगे तो यह तुरंत एनर्जी देता है। साथ ही एक इंसुलेटेड स्टील की बोतल रखें जो पानी को ठंडा कर सके। इसके बाद आपके पास इमरजेंसी किट में कूलिंग एड्स भी होने चाहिए। दोस्तों एक स्प्रे बॉटल रखें जिसमें साफ पानी भरा हो। लू लगने पर चेहरे और गर्दन को पानी पर छिड़काव करें। इसके अलावा एक बैटरी ऑपरेटेड या मैनुअल हैंड फैन रखें और छोटे गीले तौलिए भी रखें जिन्हें सिर या बगल में रखकर शरीर को ठंडा किया जा सके। धूप का सीधा संपर्क खतरनाक होता है दोस्तों, इसलिए किट में एक चौड़े किनारे वाली टोपी या छाता जरूर रखें। आंखों की सुरक्षा के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले UV प्रोटेक्टिव सनग्लासेस रखें, क्योंकि लू आंखों की नमी सोख लेती है। साथ ही SPF 30 प्लस वाला सनस्क्रीन भी शामिल करें ताकि स्किन बर्न ना हो। दोस्तों इसके साथ आपके पास एक मेडिकल किट भी होनी चाहिए जिसमें एक डिजिटल थर्मोमीटर जरूर रखें। यदि शरीर का तापमान 103 या 104 डिग्री तक पहुंच जाए तो यह हीट स्ट्रोक का संकेत हो सकता है और तुरंत अस्पताल जाने की जरूरत है। इसके साथ ही कुछ दवाएं और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स की एक लिस्ट भी रखें। दोस्तों गर्मी बढ़ रही है, सतर्क रहें, हाइड्रेट रहें। देखते ही देखते मित्रों हम आ गए हैं आज के युववाणी कार्यक्रम के अंत में। कल का कार्यक्रम भी होगा बेहद खास। कल होगी चर्चा विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस पर। फिर ज्ञान विज्ञान भाग में बात होगी उच्च रक्तचाप की और संस्था भाग में बात होगी मित्रों भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त विषय पर। साथ ही सुनेंगे आकाशवाणी 90 वर्ष पर रेडियो श्रोता अभिषेक मिश्रा से सदक हुसैन की बातचीत और हीट वेव में यूथ के लिए विशेष सावधानियों पर भी बात करेंगे। आज का आपका और मेरा साथ यहीं तक था। अपना और अपनों का ख्याल रखें, आसपास के पशु पक्षियों के लिए पानी रखना ना भूलें। नमस्कार।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो ये फटा है।
3: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
6: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें। गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
5: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
6: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
5: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
6: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
5: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
7: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com

0: अपना कार्यक्रम युग वाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: सहायता टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं भानु प्रताप और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com।

0: सुनत हूँ सखी, सुनत हूँ कार्यक्रम अंगना मा होए वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।

0: बिन सार।
1: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
2: फोन नंबर 9186877347।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। उसके पश्चात 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने पांच देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज NEET UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra

थाना तारुण जनपद अयोध्या से सूचित करते हैं कि इनके पुत्र दीपक तिवारी विगत 22 जून 2025 को ग्राम काकोली से कहीं लापता हो गए हैं। लापता दीपक की उम्र 36 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, रंग सांवला व चेहरा गोल है। घटना के समय ये गुलाबी रंग की शर्ट व काले रंग की पैंट पहने हुए थे। लापता दीपक तिवारी के बारे में यदि कोई जानकारी आपके पास हो तो कृपया अपने निकट की पुलिस चौकी, थाना, कोतवाली या कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। समीर का लिखा हुआ गीत है, संगीत है हेमेश रेशमिया का, आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम एतराज।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

0: थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
1: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705221।
2: कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं राजेश श्रीवास्तव और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

छविलाल पाल और साथियों के गाए इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव की अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वार्ता।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: पंचो जय हिंद।
7: हरी भैया।
6: हाँ भैया,
7: देखो अपन किसानवाड़ी कार्यक्रम अपने पंचवदे भाई कार्यक्रम लेके चला हुआ है।
6: हाँ देखा जवान लावा गए बाटे ना, आज किसानवाड़ी कार्यक्रम यानी है चर्चा हिमा है मक्का की खेती के बारे में जानकारी दी जाए अपने सब।
7: हाँ भैया, और देखो जैसे कि बताओ अगर अपने पंचन कहा भेंटवार्ता भी आए जायद में सब्जी उत्पादन यानी कि विशेषज्ञ है डॉक्टर लोकेश यादव और इनसे बतियाना है अपने कांति श्रीवास्तव भाई।
6: हाँ भैया, लेकिन जो गौ नहीं सुनवा जाए सस्कांत मिश्रा उनके साथ ही लोग रही है। बाजार भाव मौसम के हाल तो रहे करे अगले दिन के कार्यक्रम, लेकिन जहाँ तक बात यह है कि मक्का के खेती के बारे में जानत हो कि शायद मक्का के खेती भैया हमका लागत है जौनी वार देखा वही वार कि बारह मास ही मान के चला हुआ था के।
7: बिल्कुल भैया, और देखो 12 मास वाली भी फसल है और यह कहे देखो बाजार में मांग भी बढ़िया बनी रहा है।
6: हाँ कहे ना ही, हम तो ये कहा भैया मक्का एक बहुत महत्वपूर्ण फसल बाटे। मक्का के उपयोग जौन बा आदमी के देखा खाना यानी जानवर के चारा में बहुत कारगर बाटे माना गया।
7: मने अपने आदमी से लेके जानवर तक का काम आवत बाटे और एक देखो रोटी वोटी बन जात कितना भैया सुधारत है।
6: अरे भैया रोटी ना, अब देखा ही जो मैं रोटी की बात कहा ना, अरे भुना भुट्टा हुआ था कि जो भोज के कितना खावा जाता दलिया भाई। हाँ। खाए में स्वादिष्ट है और पाप कान यानी कईयो जगह पे भैया काम आवत है कि वही चीज।
7: हाँ भैया बिस्कुट उस्कुट तक का बढ़िया बना दी स्वादिष्ट रहा
6: था। कहे ना ही बिल्कुल, देखा मक्का के पैदावार ताई जोन बाटे बढ़िया किस्म के बीज के चुनाव करे के चाहिए। बीज हमेशा साफ और रोग मुक्त होए के चाहिए। हे भैया बुआई बरसात शुरू होए के पहले भैया जोन बाटे पंच भैया तैयारी करे लागत है।
7: बिल्कुल भैया, और एक बुआई कतार से कतार और पौधा से पौधा के दूरी से रखे से फसल बढ़िया बढ़त है और यहाँ गोबर के खाद एकरे अलावा यूरिया डीएपी और पोटास के प्रयोग किए जाते हैं।
6: देखा खाद हमेशा संतुलित मात्रा के रूप में डाले के चाहिए। इना की अंधाधुंध डाला जोन बाटे फिर फसल गिरे लागत है और नुकसान हुआ था के, तो ये सब बहुत ध्यान दे के चाहिए। इतना और ध्यान दे कि फूल निकलत समय या फिर दाना बनत समय तो ये हमारे नमी के कमी ना हो चाहिए कुल मिलाई के।
7: बिल्कुल भैया, और समय समय पर निराई गुड़ाई और जो बटे के जरूरी बटे 20-25 दिन के बाद जो बटे के निराई जरूर करें।
6: काहे मतलब खरपतवार अगर होएगे तो जो बटे कमजोरी हमारा आई जात है के ये सब पे ध्यान दे के चाहिए। हे भैया हम तो यह काम ना सोच समझ के खेती करे के बा पंच भैयन का। मक्का में बहुत मुनाफा बा है, जब भी देखा तब बारह मास लाभ दिखावत है।
7: बिल्कुल भैया जमट है, और लाभ जोन बाय जब मिला था जोन बाय जब अपने सब रोग ब्याज के सब बराबर टाइम टाइम से ध्यान दिन जाता है तब है वो कहे लाभ मिल पावत है।
6: भैया जब जोनहरी के बात कहा ना एक चीज हमका याद आई गई लड़कपन वाली।
7: हाँ।
6: अरे भैया मचाना गाड़ की जोन बाटे वो हमारा खावा जात रहा और जोन बाटे चिड़ई उड़ई जोन बाटे आवे न पावे जोन और जोन बा रात के जोन चुपके से आई जाते वन पदे देख रखावा जात रहा।
7: बिल्कुल भैया,
6: कितना बढ़िया रहा है कि वो दृश्य हर चीज जोन बाटे आज भी रखावा जाता है भाई जोन सुरक्षित हमार बचा रहा है।
7: बिल्कुल भैया, जो बटे तमाम पंच भैया जो बटे एक फसल अपनाया है खेती करता है उसे लाभ हानि लेते हैं, लेकिन एक बदे जो बटे भैया जो बटे जैसे अगर माटी वटी की अगर बात कर ली जाए ना तो एक ही जो बटे बलुई और दोमट मिट्टी की जो बटे आवश्यकता जो बटे रहा था यानी कि जो है एक 8 से 10 किलोग्राम जो है उच्च गुणवत्ता वाला जो बीज का जो प्रयोग करे के चाहिए।
6: का मतलब अगर हमें बीज डाला जाए तो जो बटे बराबर बाकायदे जामे और घनो न रहे।
7: हाँ।
6: और इतने ना ही भैया और ध्यान दिन जात है कि जैसे मान लो 3-4 जो बटे सेंटीमीटर गहराई तक ही मान चले लाइन से लाइन

0: दूरी कैसे का हुआ था भैया? खेतियत कर रहे थे ना?
1: 5 से 6 सेंटीमीटर की जो मटे गहराई जो मटे का बुआई के समतल बुआई जो मटे करेक्ट चाहिए, यानी जो बा जो 3 से 4 सेंटीमीटर और लाइन के लाइन बीच जो मटे 75 सेंटीमीटर और पौधा के बीच में जो मटे 20 सेंटीमीटर की दूरी रखे चाहिए।
0: भैया हम तो कुल मिला के यही मान के चले थे, पंच भैया तो इतना जागरूक है अपने आप उनका पता हो ही जाता है कि हमार फसल कौन मेयर से कैसे बुआई का है, और जौन बा बढ़िया निकाई गुड़ाई कर दी है, समय से खाद पानी निकी तना से देखभाल करी है, तो और थोड़े खेतन में अच्छा खासा मुनाफा कमाई के आगे बढ़त चला जाइए।
1: हाँ भैया जो बटे और खाद के बात करा जाए, खाद उर्वरक की बात करा जाए, जो 15 से 20 दिन पहले जो बटे एक प्रति एकड़ जो 3 से 4 टन अच्छी सड़ी गोबर के खाद जो है खेते में मिलाई दिए जो बटे है, और बुआई के समय DAP और पोटास और जो बतावा गवा एक सब माने समय समय पर डाल दिए।
0: हे भैया पहले समय में का कहा जात रहा तनी याद दिलावा, अरे भाई खादी कूरा नटर एक कर्म लिखा टर जाए, एक खेप जहां गिराई देत रहा मन ऊ जोन बा एक फसल नहीं आगे वाली एक ऊ फसल ताई जोन बाटे अपन असर छोड़त ना रहा ऊ जबर रहा है।
1: भैया देखो गुरु खदिया आ सिनाए पहले से सदियों से चला हुआ के बहुत ताकत रहा था, खेते के बिल्कुल मान के चलो के जो जैविक शक्ति है ना वो बिल्कुल बरकरार रहा था और कोनो रोग ब्याज आवे डर कम रहा था।
0: हे हम तो यह कहा भैया ना कुल मिलाई के जोन बाटे पंच भैया रासायनिक खाद धीरे धीरे कम करा भैया, सुख और चैन की जिंदगी जिए ताई बहुत बढ़िया हिसाब किताब है, अगर हिसाब किताब दुरुस्त कर लेबा तो सबसे बढ़िया रहे। और एक चीज और याद दिलावत है, जानत हो का ये जोन सब्जी रोज खाए वाली बाटे मान के चलता है ना, अगर पंच भैया यहां सुधार कर लिए कि हमका बाजार से ना खरीदे परे, जैसे थोड़ा थार जमीन जो हिगा लिए कि हमका सब्जी के खेती करे का है, बारहो मास खाए के जरूरत पड़ा था, हम तो ये मान के चले थे रोग बीमारी बहुत कम हो जाए, और नीम उम का छिड़काव करा अपने आप जोन बाटे जहरीली दवा डरबे नहीं करा।
1: बिल्कुल भैया, और यही सब जो घुरखदिया हो गए घरेलू जो सब रहा था अपन यही कहा सड़ाए गलाए के वैसे तैयार हुआ था, तो जान लियो की बहुत
0: लेकिन तमाम पंच भैया ऐसा होते कृषि वैज्ञानिक लोग होते वो कुछ हिसाब किताब से ऐसा बतावा थे, अगर उनके हिसाब से अगर काम की जाए तो हम तो कही थे कि अच्छा खासा मुनाफा कमाई के आगे बढ़े, हम तनिको संकोच न करिए।
1: हाँ भैया लेकिन अगर जब ध्यान से सुने पंचायत जो भाई तो लाभ जरूर मिले।
0: लेकिन कैसे सुने भैया बताओ?
1: तो देखो भेंटवार्ता है जायद में सब्जी उत्पादन विषय है और एक विशेषज्ञ है डॉक्टर लोकेश यादव, तो चलो अपने सब ही और अपने किसान पंच भैया भी सुने।
0: अब कांति श्रीवास्तव बतियान है।
1: बिल्कुल
2: देखो पंचो जायद में सब्जी उत्पादन के बारे में आज अपने सबके बीच में डॉक्टर लोकेश भैया आवा है जोन विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र पाती अम्बेडकर नगर से हैं। तो भैया सबसे पहले आपसे हम स्वागत करत भाई आपसे ही जाना चाहिए थे कि जैसे जायद के फसल है ओमन का और कैसे लीन जा सकत है।
3: नमस्कार किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहेंगे जायद की प्रमुख फसलें हैं जैसे खीरा ककड़ी लौकी करेला तरोई कद्दू तरबूज जायद ऋतु में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं।
2: ये तो जैसे बताए खीरा ककड़ी कद्दू वगैरह जायद में उगाई जाए वाली फसल है, लेकिन एका उगावे के लिए अपने सब जैसे फसल उगावे का है तो कौन सा जलवायु या कौन सी माटी एकरे लिए उपयुक्त होता है?
3: प्रमुख तौर से कद्दू और ये सब्जियों की खेती करने के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। हाँ। जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य हो, उस भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था हो, इसके उगाने के लिए आदर्श तापक्रम 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, फसल वृद्धि के लिए औसत तापमान 22 से 35 डिग्री तक ले सकते हैं, यह गर्म और आर्द्र जलवायु की फसल है।
2: मतलब एक गर्मी में बढ़िया से उगाया जा सकता है कि नहीं?
3: जी जी।
2: और माटी के जैसे अगर बात की जाए तो
3: मिट्टी के लिए बताया तो दोमट और बलुई दोमट मिट्टी का चुनाव करते हैं जिसका पीएच 6 से 7.5 के मध्य होता है,
2: मतलब दोनों में उगाया जा सकता है। अच्छा ये तो रही माटी के और जलवायु के बात, लेकिन यही के साथ साथ जैसे हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि खेते के जो तैयारी है वो का कैसे की जाए?
3: खेत की तैयारी करने के लिए हमें 2 से 3 गहरी जुताई करनी चाहिए। आखिरी जुताई करते समय 20 से 25 टन गोबर की खाद डाल के अच्छे से मिला के और भूमि की तैयारी कर लेते हैं। इसके बाद मेड़ और नालियां बना के और उस पर ड्रिप सिस्टम लगा के रेडी करके इसके बाद ही बीज की बुआई करना उचित माना जाता है।
2: तो बहुत अच्छी बात बताएं कि मेड़ बनाए के तो खेत की तैयारी की जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकरे साथ ही साथ जैसे जायद के जो फसल है अपने सभी लेन जात साग भाजी का समय और बीज दर कैसे अपने सभी लीन जाए कि कितना बीज अपने खेती पाती में बोआ जाए और कितने ओका भुइया में बोआ जाए।
3: जायद की प्रमुख बहुत सी सब्जियां हैं जिनका अलग बीज

0: दर है
1: जी,
0: उनका अलग पौधरोपण की डिस्टेंस भी है, दूरी भी है। जैसे खीरा ककड़ी हम उत्तर भारत में फरवरी मार्च में भी बुआई करते हैं, ग्रीष्म ऋतु की फसल की बुआई फरवरी मार्च में करते हैं तथा वर्षा ऋतु वाली फसल की बुआई जून जुलाई में करते हैं, और वहीं दक्षिणी भारत में हम पूरे वर्ष भर उसकी खेती कर सकते हैं। दूसरा है लौकी और तरोई। लौकी तरोई की खेती हम उत्तर भारत में जनवरी से मार्च

0: किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की मात्रा की आवश्यकता होती है हमें, जिसकी डिस्टेंस जो होता है 3x1 मीटर रखते हैं, पौध से पौध की दूरी 1 मीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 3 मीटर रखते हैं।
1: अच्छा,
0: इसकी बुआई से पहले हम बीज बोने से पहले बीज का उपचार कर लेते हैं, जैसे कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज दर की हिसाब से बुआई करते हैं, और दूसरी दवा है थीरम 2-3 ग्राम प्रति किलो की दर से पहले सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं बीज उपचार करके। एक जैविक विकल्प भी है ट्राइकोडर्मा से 5-10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से हम उसका सीड ट्रीटमेंट करके ही बीज की बुआई करने पे अंकुरण प्रतिशत अधिक मिलता है और उत्पादन अच्छा होता है।
1: बहुत अच्छी बात बताएं। तो ये जैसे जो खीरा ककड़ी कद्दू और ये जितनी मतलब चीज है सब माइसने की जाए कि कुछ अलग अलग भी है?
0: सभी की कद्दू और की फसलों की एक समान से ही बीज ट्रीटमेंट करना चाहिए।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो बात रही कि बुआई समय और बीज दर के बाद, लेकिन एक जब सिंचाई के समय आवत है तो ओका कैसे हमारे समय कीन जाए, कितने दिन पर कीन जाए?
0: सिंचाई प्रमुख तौर से गर्मी के दिनों में 4-6 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहने चाहिए मौसम के अनुकूल देखते हुए।
1: मतलब ये बुआई के 4-6 दिन की,
0: बुआई के 4-6 दिन के बाद मॉइस्चर लेवल के हिसाब से देखते हुए,
1: मतलब नमी
0: को देखते हुए 5-6 दिन के अंतराल पर रहने चाहिए। मेन बात ये होती है फूल और फल बनने के समय पर्याप्त नमी होना बहुत ही आवश्यक है, और ड्रिप सिस्टम अगर लगाते हैं, बौछार विधि लगाते हैं, तो उससे 40-50% की वृद्धि होती है और उत्पादन अच्छा मिलता है। वहीं मल्चिंग और ट्रेलिस प्रणाली का यूज करके, मल्च का अगर यह हम बेड़ों पर यूज करते हैं तो उससे खरपतवार नियंत्रण होता है और नमी का संरक्षण होता है, फल साफ और आकर्षित होते हैं मल्च लगाने से, हमें ये फायदा मिल जाता है।
1: अच्छा, ये तो रही सिंचाई के बाद, लेकिन जैसे कभो कभो देखा कि मिला था भैया ना कि कीट किरौना या रोग भी याद अपने खेती पाती में लाग जाते हैं, चाहे उजायत के फसल हो या कोनो भी चीज का अगर फसल है, तो कीट किरौना जब लाग गए तो वह सही थी, हम ओके पहचान कैसे करी, ओके नियंत्रण कैसे करी?
0: कद्दू वर्गीय फसलों का प्रमुख कीट है लाल कद्दू बीटल, जिसे रेड पंपकिन बीटल बोलते हैं। ये जमाव के अवस्था में ही, जब बुआई के 2-3 दिन बाद ही, जब कॉटिलीडन उसका एकदम नरम रहता है, उसी समय जमीन के अंदर ही उसके कॉटिलीडन को काट देते हैं। अच्छा। जिससे जमाव नहीं होता है, उसके जमाव को हमें मेंटेन करने के लिए हमें किसी भी फंजीसाइड का आधे भाग फंजीसाइड और आधी मिट्टी लेके और उसको ड्रेंच कर देते हैं पौधे के ऊपर 2-3 दिन के बाद जमाव के ऊपर, तो हमें इस रेड पंपकिन बीटल से समझौता मिल जाता है।
1: जी, जोन ड्रेंच बताओ बाटिन, ये कैसे?
0: ड्रेंच मतलब एक कॉटन के बैग में आधी भाग मिट्टी और आधी भाग फंजीसाइड मिक्स करके और एक डंडे से और लाइन टू लाइन ऐसे ड्रेंच छिड़काव कर देते हैं, उससे पर्याप्त काफी सुधार मिलता है। और दूसरा इस प्रमुख कीट है फ्रूट बोरर, जिसे व्हाइट फ्लाई और फ्रूट बोरर भी घातक समस्या है। इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनाल ट्रैप का यूज करते हैं और किसी भी इमिडा क्लोरोपीड या किसी भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो हमें काफी सुधार देखने को मिलता है।
1: अच्छा।
0: और इसके प्रमुख रोग भी हैं, जैसे डाउनी मिल्डू लगता है, पत्तियां पीले धब्बे के आकार के हो जाती हैं, इसके उपचार के लिए हमें मेटालेक्सेल का छिड़काव करते हैं। और दूसरा है पाउडरी मिल्डू, इसके पत्तियों की सतह पे सफेद पाउडर नुमा देखने को मिलता है, उसके निजात के लिए हमें सल्फर युक्त फंजीसाइड का प्रयोग करने से हमें काफी सुधार मिलता है।
1: तो रही भैया जैसे रसायन विधि के बात करत बाटिन, लेकिन कुछ घरेलू जैसे हमारे सब जो किसान पंचायत है, कुछ लोग घरेलू विधि से उपचार करत है, तो का कुछ ऐसा है आप
0: घरेलू उपचार के लिए? जैसे नीम आधारित कीटनाशक बनाते हैं, उससे भी हमें काफी, और एक बायोकेमिकल मेथड है जैसे फेरामोन ट्रैप का यूज करते हैं।
1: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात बताएं। लेकिन इसके अलावा हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे मान लिया फसल आपके तैयार हो गए तो कई तुड़ाई के जब समय आए गए, तो तुड़ाई में कैसे हम ओके भाई सावधानी रखी तुड़ाई करत के और कौन ओके औसत उत्पादन होते है, एक हम कैसे जान पाई?
0: फसल की तुड़ाई नियमित, जब फसल पक जाए तो नियमित अंतराल पे तुड़ाई करते रहना चाहिए बाजार के हिसाब से।
1: अच्छा।
0: जैसे लौकी है तो उसको कोमल अवस्था में ही तुड़ाई करेंगे, नियमित तुड़ाई से अधिक उत्पादन मिलता है। और जैसे इसकी प्रमुख अंतराल है फसलों की तुड़ाई का, जैसे खीरा की तुड़ाई हम 40-45 दिन में करते हैं, लौकी की तुड़ाई 55 से 70 दिन में कर लेते हैं और करेले की तुड़ाई 55 से बोने के 55 से 65 दिन बाद करते हैं और तरबूज की तुड़ाई 80 से 100 दिन बाद लगभग करते हैं तो अच्छा उत्पादन अच्छा। मिलता है।
1: जैसे बाजार में मांग देखें वही हिसाब से तुड़ाई करके
0: बाजार में बेचने के लिए।
1: बहुत अच्छी बात बताएं। लेकिन ये तो रही भैया कि जैसे फसल की तुड़ाई है
0: इसका उत्पादन भी है एक प्रमुख बिंदु है।

0: जैसे हर कद्दू वर्गीय सब्जियों की अलग अलग उत्पादन दर है, जैसे खीरे की उत्पादन हमें 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है, जो अच्छी खेती है।
1: अच्छा।
0: और लौकी का ऐसे 300 से 500 क्विंटल औसत उत्पादन एक हेक्टेयर में देखने को मिलता है। ऐसे करेला की 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, तरबूज की 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल जाता है, यदि अच्छी खेती की करें किसान भाई तो।
1: अगर मेहनत से खूब बढ़िया तरीके से करें तो,
0: वैज्ञानिक विधि अपनाएंगे तो अच्छा
1: उत्पादन हुए। लेकिन एक आपसे जानना चाहते कि जैसे अगर ये तो सब बात बताई ना आप, लेकिन हमारे पंच भैया लोगन के लिए अगर कोनो खास मेर का आपके पास संदेश हुआ है या इतनी कोनो अच्छी बात हुआ जो उनकी आप उनका बताओ कि उनसे मतलब उससे उनका लाभ पहुंचे।
0: मेन है कि हमें या तो फसल हमें अच्छा मुनाफा तभी देगा या तो बाजार में अगेती आगे आपकी फसल आ जाए
1: जी
0: बिक्री के लिए या तो लेट आए। बीच के समय में तो सबके पास रहता है टाइम, पैसा है, बाजार भाव कम मिलता है। यदि हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं तो उसकी हम अगर पौध हम दिसंबर और जनवरी में पॉली बैग में पौध जमा लें और जनवरी के लास्ट तक उसकी बुआई कर दे तो हमें बाजार में फरवरी एंड तक लगभग 45 दिन बाद हमें फल आ जाएगा, तो अगेती के लिए बहुत अच्छा है। और उसको जमाने के लिए उस टाइम आदर्श तापक्रम रहता है, ठंडी पॉली बैग या लो टनल में उसको हम जमा लेते हैं तो अगेती हमें फसल देखने को मिल जाती है।
1: जायर में सब्जी उत्पादन विषय पर डॉक्टर लोकेश यादव भैया जो उनकी विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र पाती अम्बेडकर नगर से आवार हैं, तो आपका इकरे बदे बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सर जी भैया।
3: हाँ भैया हरी,
2: तनी सुनत रहे हो ना।
3: हाँ।
2: देखा जायद में सब्जी उत्पादन एक जानकारी देते रहे डॉक्टर लोकेश यादव भैया, इनसे कांति श्रीवास्तव भैया कितनी नेकी तना से बतियाए बतियाए पूछे कि भैया एफ जोन बा अमल करे के जरूरत है।
3: देखो भैया जोन किसान पंचायत बराबर अपन रेडियो किसान वाड़ी कार्यक्रम सुना था है, यहाँ से जो डॉक्टर वैज्ञानिक भैया आवत हैं इतना बढ़िया बढ़िया जानकारी जो बटे और उनसे निचोड़ के जो बटे अपने साथी पूछा जो बा कितना अच्छा लागत है, ऐसे जो मने अगर सुनाता है और गुनाता है खेती में तो लाभ दे।
2: देखा भैया हम तो यही साथे साथे यह कहा कि जो है पंच भैया जानवर पाले, जानवर पाले से उनका बहुत सुकून मिले, दूध घी जोन बा खाबे करी है, ओकरी बाद जोन बा गोबर तैयार हुए देसिया खाद डाला खेते में, आम के आम गुठली के दाम वाली बात हो ही जात है कि यही साथे जानो थे अगर गोबर गैस लगवा ला तो कितना फायदेमंद वाली चीज आटे। और तोहरे भौजी जोन बाटे कितना बार बार कहते हैं कि गोबर गैस लगवा ला कितना फायदा है, जहरी वहरी झंखे के कोनो जरूरत नहीं है, लेकिन कैसे लगवा लिए तनी यह बतावत चला।
3: भैया देखो शशिकांत मिश्रा उनके साथी के स्वर में जो बटे अब की गोबर गैस लगोबो बालमा लगाइबो बालमा कह के चलो अपने सही सुना जाए अपन पंचे भी सुने।

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: परम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: सरजू भैया।
4: हाँ भैया हरी।
3: ये बताओ, ये हाथ में काव लिए हो?
4: देखो भैया, अपने ये अयोध्या मंडी का भाव, बाजार भाव है।
3: तनी बताओ चला।
4: तो जो चावल कामन है वो 3060 रुपया प्रति क्विंटल रहा, गेहूं दड़ा 2585 रुपया प्रति क्विंटल रहा, मक्का पीली 2385 रुपया प्रति क्विंटल रहा।
3: देखा भैया, उड़द काली जोन पर 9200 रुपया, चना देसी 6400 रुपया, मसूर 7000 रुपया, अरहर दाल भैया 10900 रुपया, आलू सफेद की 725 रुपया, प्याज ललकी है यानी कि 1225 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से,
4: टमाटर 2100 रुपया प्रति क्विंटल रहा, लहसुन 6900 रुपया प्रति क्विंटल, तरोई 2180 रुपया प्रति क्विंटल, खीरा 1450 रुपया प्रति क्विंटल, बैगन 2250 रुपया प्रति क्विंटल।
3: देखा हरियर की मिर्च जोन पर 3400, कद्दू 1350, अदरक 5700, शिमला मिर्च 2900, भिंडी 1850, लौकी 1590, करेला 1470 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से।
4: हाँ भैया, लेकिन लगे हाथ पंचन का है, मौसम का हालचाल भी बता दें।
3: बताओ चलो।
4: आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का हालचाल मिला हुआ है, वो कुछ यह प्रकार से है, अधिकतम जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहा, जो उनके सामान्य से -1.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा, और न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेल्सियस, जो उनके सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा।
3: हे भैया, अधिकतम आर्द्रता 82%, न्यूनतम आर्द्रता 50%, हवा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दिशा यानी रही दक्षिणी पश्चिमी, आगामी 24 घंटा के बारे में यह अनुमान है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहे, हवा सामान्य व सामान्य से तेज गति से पूर्वी पश्चिमी चले के आसार नजर आए।
4: मुल्ला भैया, काल पंजे का सुनिए कार्यक्रम, बताओ चली, कल है चर्चा विश्व हाइपर टेंशन दिवस, और साथ साथ भेंटवार्ता भी रहे, स्वयं सहायता समूह का गठन एवं उसके लाभ, श्री एक बताई है श्री अरुणेश कुमार, अरुण कुमार वर्मा, और इनसे बताया है अपने प्रभाकर शुक्ला भैया।
3: देखा भैया, समय यह कहा था, चले का वक्त है, यही साथ है हरी भैया
4: और सरजू का दिया अनुमति।
3: जय हिंद।
5: कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, सबसे पहले आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर एक नजर। हमारे आज के शेष कार्यक्रमों में रात्रि 8:15 पर एक ही कलाकार से, 9:15 पर महफिल गजल, और 9:30 पर सुनिएगा सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण, और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। कल प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम विवरण, 7:30 पर अमृत कलश, और 8:15 पर सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। पर प्रसारित होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, इसके अंतर्गत आज की बात में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अलावा डॉक्टर आनंद गुप्ता से भेंटवार्ता होगी, उच्च रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं और उसका समाधान, बातचीत करेंगे संजय धर।

9 बजे आपके संदेश, आपके गीत, 9:30 पर बातें आसपास की, 1 बजे सजीव फोन इन हेलो अयोध्या, और 1:30 पर सुनिएगा फेसबुक फरमाइशी कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग 12:30 और गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि का समय होगा 2 बजे से।

दोपहर 2:30 पर बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल जगत। इसके अंतर्गत चर्चा होगी विश्व हाइपरटेंशन दिवस और धीमा जहर है फास्ट फूड। साथ ही वार्ता सुनिएगा, यूं ही नहीं जाने देंगे गर्मी की छुट्टियों को। वार्ताकार होंगी स्तुति। इसके अलावा रोचक जानकारी में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रेरक व्यक्तित्व में सुमित्रा नंदन पंत और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भालेंद्र प्रताप सिंह की वार्ता होगी। बच्चों में हाइपरटेंशन की समस्या पर आधारित हम हैं सुपर ना कि स्लो। शाम 5:00 युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। इसके अंतर्गत चर्चा होगी विश्व दूर संचार और सूचना समाज विषय पर, सूचना समाज दिवस पर। इसके अलावा आकाशवाणी के 90 वर्ष पर रेडियो श्रोता अभिषेक मिश्रा से बातचीत। साथ ही संस्था में जानिएगा भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के बारे में। 5:30 पर लोक संगीत, 6:10 पर शाम सुहानी और 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। कार्यक्रम कृषि जगत का समय होगा 6:45 पर। इसके अंतर्गत चर्चा का विषय होगा विश्व हाइपरटेंशन दिवस। साथ ही लोकगीत मौसम का हाल के अतिरिक्त अरुण कुमार वर्मा से भेंटवार्ता होगी। स्वयं सहायता समूह का गठन एवं उसके लाभ। रात्रि 8:15 पर शेर और गीत, 9:15 पर साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी और 9:30 का समय होगा सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या का। ये थी हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बेली पार्क क्षेत्र स्थित

0: ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
1: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में BCCI की मदद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
1: आज का दिन हम सब के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
0: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए CSR फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया है। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसमें इंडोर खेलों की सुविधाएं मिलेंगी। ये स्टेडियम कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बाद प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होगा। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर कल प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपए है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऊर्जा बचत की अपील के मद्देनजर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक

0: सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये पहल न केवल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का परिचायक होगी बल्कि आर्थिक अनुशासन और ऊर्जा बचत के दृष्टिगत समाज में सकारात्मक संदेश भी देगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सपा नेता मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में आज रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
1: बहुत पुराना कॉलेज है आजादी के बाद का पहला और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ। तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो और इस पे मेरा प्रयास रहेगा।
0: चित्रकूट नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि चित्रकूट में 90 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे।
2: उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए आज चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
0: वट सावित्री का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी में सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग और पति के दीर्घ स्वस्थ जीवन के लिए वट सावित्री निर्जला व्रत रखा है। व्रती महिलाओं ने विधि विधान से सावित्री माता की पूजा के बाद बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर अटल सौभाग्य की कामना की। प्रयागराज में व्रती महिलाओं ने आज सुबह संगम में पवित्र स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ की पूजा कर अपने सुहाग की सलामती और लंबी उम्र की प्रार्थना की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मॉनसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मॉनसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। सिंचाई और जल संसाधन की ओर से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए यह कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। इनके जरिए जलस्तर की रियल टाइम निगरानी और आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ सुरक्षा समितियां तैयार की जा रही हैं। इनमें संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर, ग्राम प्रधान और लेखपाल सहित स्थानीय लोगों को जोड़ा जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
2: जाता है और काम रुक जाता है, आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को

0: होगी ना जाए।
1: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला। हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्मकार सुनील दत्त द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

वाकया मुकेश भाई का भी याद आया। उन दिनों उन्हें पहली बार हार्ट अटैक हुआ था और हम लोग कहीं प्रोग्राम करने जा रहे थे। मुकेश भाई भी चलने को तैयार हो गए। मैंने कहा, मुकेश भाई सफर लंबा है, आपको तकलीफ हो जाएगी। तो मुकेश भाई ने कहा, तुम चिंता ना करो, जवानों को खुश करने में मुझे कभी और किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। तो वो हमारे साथ गए और अपनी आवाज से जवानों के दिलों को गर्माते

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर।

मगर उस सैनिक के ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। ऐसे जवान जो हमसे प्रेरणा लेते हैं, उनके लिए ये गीत मैं पेश करता हूं।

0: अच्छा फौजी भाइयों, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब मैं इजाजत चाहूंगा, आइंदा जब भी आप याद करेंगे मुझे अपने करीब पाएंगे। नमस्ते।
1: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया फिल्मकार सुनील दत्त ने। ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी विविध भारती के संग्रहालय से।

0: सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध

जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आजकल फर्जी सिम कार्ड की समस्या बहुत बढ़ गई है। कुछ लोग आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करके आपके नाम पर सिम

देखते हैं। बाद में उस सिम से कोई गलत गतिविधि होती है तो पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति के पास पहुंचती है। ऐसे में बेवजह पुलिस केस में नाम आने से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि समय समय पर आप चेक करते रहें कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं। भारत सरकार ने इसके लिए संचार साथी नाम का एक पोर्टल बनाया है। ये पूरी तरह से फ्री और सुरक्षित तरीका है। जिज्ञासा कार्यक्रम में आज हम आपको बता रहे हैं कि संचार साथी में कैसे ये चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ब्राउजर खोलें और लिखें sanchar.sathi.gov.in या लिखें sancharsathi.gov.in। संचार साथी की स्पेलिंग है sancharsathi, sancharsathi.gov.in या sanchar.sathi.gov.in। उसके बाद आपको एक ऑप्शन चुनना है नो योर मोबाइल कनेक्शंस या कनेक्टेड मोबाइल नंबर्स। वहां अपना आधार नंबर और कैप्चा भरें, ओटीपी आएगा उसे डालें। स्क्रीन पर आपके नाम पर रजिस्टर्ड सभी मोबाइल नंबर दिख जाएंगे। अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिखे जो कि अनजान हो, जो आपने कभी नहीं लिया, तो तुरंत उसी पोर्टल पर रिपोर्ट फ्रॉड या ब्लॉक कनेक्शन का ऑप्शन चुनें और इस तरह से आप उस सिम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। फर्जी सिम कार्ड को ब्लॉक करने के लिए पोर्टल पर सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर सेक्शन यानी CEIR सेक्शन में जाना है। वहां फर्जी नंबर की शिकायत दर्ज करना है। जो जरूरी दस्तावेज हैं वो आधार और फोटो हो सकते हैं, उन्हें अपलोड कीजिए। कुछ ही घंटों में ये नंबर ब्लॉक हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब झंझट करने की जरूरत क्या है, तो आपको बता दें कि अगर आपके नाम पर कोई फर्जी सिम कार्ड चल रहा है और कोई ठगी हो जाती है या कोई गलत काम हो जाता है तो सबसे पहले पुलिस आपके पास आएगी। इसलिए जरूरी यह है कि आप हमेशा चेक करते रहें कि आपके नाम पर कोई गलत सिम कार्ड तो नहीं चल रहा। बैंक अकाउंट UPI आधार से लिंक होने पर आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। और हाँ, अब इससे जुड़ी कुछ और बातें आपको बताएं। कम से कम 3 महीने या 6 महीने में एक बार हर व्यक्ति के लिए ये चेक करना जरूरी है कि आपके नाम पर कोई अनजान नंबर तो नहीं चल रहा है। दूसरी चीज ये है कि जब भी कभी आप अपने आधार कार्ड की कॉपी कहीं सबमिट करते हैं तो उस कॉपी को साइन करते हुए वहां लिखें फॉर गैस कनेक्शन, फॉर होटल बुकिंग। या किसी अनजान आदमी को आधार कार्ड कतई ना दें, ना ही उसकी कॉपी दें। अगर सिम ले रहे हैं तो खुद मौजूद रहें, किसी और व्यक्ति को सिम लेने के लिए ना भेजें। अगर कोई फर्जी नंबर मिले तो तुरंत ब्लॉक करें और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रहे sancharsathi.gov.in पर जाकर आप ये काम कर सकते हैं।

राजस्थान के जैसलमेर शहर में इस हफ्ते तापमान 51 डिग्री पहुंच गया। जाहिर है कि ये भयानक गर्मी है, भीषण गर्मी है। ऐसे में लोग एयर कंडीशन पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन एक सवाल सबके मन में है कि क्या 51-52 डिग्री तक की जो गर्मी है उसमें एसी कुछ कर सकता है। दरअसल एसी तकरीबन 52 डिग्री तक ही कूलिंग कर पाता है, और उसके आगे क्या? ज्यादातर एयर कंडीशनर बाहर 50 या 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो तो ठीक से काम करते हैं, पर तापमान इससे ऊपर हो तो एसी की कूलिंग क्षमता जवाब देने लगती है। इसका कारण यह है कि एसी बाहर की गर्म हवा से अंदर की गर्मी निकालकर ठंडी हवा बनाता है। जब बाहर का तापमान 51-52 डिग्री हो जाता है, जैसा जैसलमेर में हुआ, तो एसी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसलिए कमरे का तापमान 28 से 30 डिग्री से नीचे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एसी लगातार चलता है लेकिन ठंडक कम मिलती है, बिजली का बिल बढ़ता चला जाता है, या फिर एसी जल्दी गर्म हो जाता है और खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि 50 डिग्री से ऊपर के तापमान में एसी के काम करने की काबिलियत 30-40% तक कम हो जाती है। अगर आपने एसी को 24 डिग्री पर सेट किया है, 24 डिग्री पर, तो आपका कमरा 30-32 डिग्री से ज्यादा ठंडा नहीं होगा। कुछ मामलों में एसी केवल हवा फेंकता रहेगा लेकिन आपको ठंडक महसूस नहीं होगी। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में एसी का तापमान आपको सेट करना है 26 से 28 डिग्री पर, यानी 20 से 22 डिग्री पर एसी नहीं रखना है। इससे एसी पर दबाव कम पड़ेगा और आपकी बिजली भी बचेगी। दूसरी बात, अगर भीषण

गर्मी पड़ रही है तो एसी की नियमित सर्विस करवाएं। गर्मी से पहले और बीच बीच में एसी की अच्छे से सर्विसिंग करवाएं, क्योंकि गंदा फिल्टर, ब्लॉक कॉइल्स एसी के परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं। घर को गर्मी से बचाएं, दिन में पर्दे बंद रखें, छत पर व्हाइट रिफ्लेक्टिव पेंट करवाएं ताकि गर्मी छत में समा न जाए। रात में खिड़कियां खोलकर क्रॉस वेंटिलेशन करें, कूलर का भी इस्तेमाल करें, यानी पहले कूलर के जरिए आप इस कमरे को ठंडा कर सकते हैं, उसके बाद एसी चलाएं। इन्वर्टर एसी का बहुत बड़ा फायदा होता है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी ज्यादा गर्मी में भी बेहतर परफॉर्मेंस करता है। तो ये तमाम चीजें हैं। उसके अलावा इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जिज्ञासा में पिछले हफ्ते भी हमने आपसे कहा था और इस हफ्ते भी हम कह रहे हैं कि इस गर्मी में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और थकान का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हो पानी पिए, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने, दोपहर में जहां तक मुमकिन हो बाहर निकलने से

और अब जिज्ञासा कार्यक्रम में हम आपको हंटा वायरस के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में इन दिनों लगातार चर्चा हो रही है। अटलांटिक महासागर में होंडियस नामक क्रूज शिप पर 7 लोगों के बीमार पाए जाने और 3 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। इसका कारण है शिप पर संदिग्ध हंटा वायरस का फैलना। दरअसल जहाज में तकरीबन 150 यात्री और इसके अलावा चालक दल के सदस्य मौजूद थे। हंटा वायरस से जुड़े मामलों के सामने आने के बाद ये जहाज अब स्पेन के कैनरी आइलैंड्स की तरफ जा रहा है। यहां मरीजों को मेडिकल मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया है कि केप वर्डे इस ऑपरेशन को पूरा करने में सक्षम नहीं है। कैनरी द्वीप इसके सबसे नजदीक है और यहां ज्यादा सुविधाएं हैं, इसलिए इन लोगों की मदद करना स्पेन का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है। सवाल यह है कि ये हंटा वायरस कैसे फैलता है। ये जो नाम है ये कोरियाई नदी हंतान से लिया गया है। दरअसल 1950 के दशक में कोरिया के इस इलाके में कई सैनिक इस वायरस से बीमार हुए, लेकिन सन 1977 में पहली बार इस वायरस की पहचान हुई। हंटा वायरस वायरस का एक ऐसा समूह है जो आमतौर पर चूहों और उनकी प्रजातियों में पाया जाता है। अगर ये इंसान में फैल जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक हर साल इसके संक्रमण से 10,000 से 1,00,000 तक लोग प्रभावित होते हैं। हंटा वायरस संक्रमित चूहों के लार, मूत्र और मल के जरिए बाहर निकलता है। जब यह पदार्थ सूखकर धूल बन जाता है और हवा में उड़ता है तो सांस के जरिए इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर यही वायरस इंसान के शरीर में इंफेक्शन पैदा करता है और अलग अलग तरह के लक्षण सामने आ सकते हैं। हंटा वायरस कई तरीकों से इंसानों में फैलता है, खासकर जब कोई इंसान बाहरी गतिविधियों के दौरान चूहों के मलमूत्र के संपर्क में आता है, जैसे बागवानी करते, लकड़ी काटते, जॉगिंग करते हुए, या फिर इसके अलावा इसका खतरा ऐसे इलाकों में ज्यादा होता है जहां चूहों की संख्या ज्यादा हो। आमतौर पर इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, लेकिन कभी कभी जब लंबे समय तक लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तब ऐसा जरूर होता है। यही कारण है कि इसका संक्रमण खासकर घर के सदस्यों या करीबी लोगों में ज्यादा फैलता देखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हंटा वायरस से संक्रमित होने के लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क के 1 से 8 हफ्ते के भीतर शुरू होते हैं। आम लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द, पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे पेट दर्द, जी मिचलाना या उल्टी होना शामिल है। ये वायरस इंसान में 2 तरह की बीमारी पैदा कर सकते हैं। पहली बीमारी है हंटा वायरस कार्डियो पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPCS। इसका असर ज्यादातर अमेरिका में देखा गया है। ये बीमारी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे फेफड़ों में पानी भर जाता है, इससे खांसी होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। और दूसरी जो बीमारी है वो है हेमरेजिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम। हंटा वायरस से होने वाली इस बीमारी का असर यूरोप और एशिया में देखा गया है। इसमें नुकसान गुर्दे को पहुंचता है और ब्लड प्रेशर लो होता है, खून बहने की समस्याएं होती हैं, कई बार तो गुर्दे अचानक काम करना बंद कर देते हैं। अब तक इस बीमारी का पूरी तरह से कोई इलाज मौजूद नहीं है। इसके लक्षणों का इलाज किया जाता है। इसमें मरीज की सांसों, दिल और गुर्दे से जुड़ी समस्याओं पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और जरूरत पड़ने पर मरीज को सहायता दी जाती है। जब बीमारी फैल रही हो या मामले संदिग्ध हो तो मरीजों को फौरन पहचानना और उन्हें आइसोलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मरीजों के संपर्क में आए लोगों की टेस्टिंग जरूरी है और सामान्य बचाव के उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हंटा वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है इससे सावधान रहना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक संक्रमण

बचने के लिए चूहों की रोकथाम बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने को सुरक्षित तरीके से ढककर रखना है और इसके अलावा गंदगी से बचना एक बहुत जरूरी उपाय है। भारत में अलग अलग समूह के लोगों के शरीर में हंटा वायरस एंटीबॉडी होने की जांच की गई है। इस जांच में तकरीबन 38 नमूनों में से 28 में हंटा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की पुष्टि

खिलाफ एंटीबॉडी की पुष्टि हुई है। इससे ये साबित होता है कि भारत में भी हंटा वायरस मौजूद है और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और अब चलते चलते साइबर क्राइम की एक नई घटना और उससे जुड़ी सावधानियों की बातें। बेंगलोर में एक व्यक्ति के पास व्हाट्सएप पर शादी का एक कार्ड आया। उसने वो कार्ड खोला और उसका बैंक अकाउंट खाली हो गया। दरअसल उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, उसको लगा कि ये शादी का कार्ड है। वहां एक फूलों से सजी हुई तस्वीर नजर आ रही थी, लेकिन वो फाइल कोई इमेज फाइल नहीं थी, बल्कि वो फाइल .apk फाइल थी जो किसी अनजान नंबर से आई थी और देखने में ये लग रहा था कि वो शादी का कार्ड है। दरअसल स्कैमर्स अक्सर लोगों की तकनीकी कमियों का ही फायदा उठाते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को फोन सुरक्षा के बेसिक रूल्स बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई, जब कभी भी आपके पास किसी अनजान व्यक्ति का कोई मैसेज आए, खासतौर पर वो मैसेज ग्राफिक हो, तो चेक करना चाहिए कोई भी फाइल जिसमें तस्वीर होती है वो फाइल APK नहीं हो सकती। वो फाइल हमेशा .jpg फाइल होगी। APK फाइल का मतलब ही है कि आपके मोबाइल में कुछ इंस्टॉल किया जा रहा है। सावधान रहें, सतर्क रहें और साइबर क्राइम से बचें। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। अब मिलते

0: ऊंचा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: गीता महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ। आइए सुनते हैं पत्नी का पत्र, इस कहानी का तीसरा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का।

0: बाजार से तंग आकर मृणाल के घर आ जाती है। लेकिन मृणाल के परिवार के सदस्य बिंदु को सम्मान नहीं देते। बिंदु का रंग काला था। विवाह में अड़चने होती हैं, लेकिन तय हो जाता है विवाह पर एक पागल व्यक्ति से। बिंदु कतई नहीं चाहती शादी करना। अब सुनिए आगे। बिंदु का वर ठीक हुआ। बड़ी जेठानी बोली, जान बची, माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती, तुम्ही लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगी थी, बोली थी,
1: जी जी जी जी, मेरा ब्याह क्यों करवा रही हो भला, बोलो।
0: मैंने उसे समझाते बुझाते कहा था, बिंदु डर मत, मैंने सुना है तेरा वर बहुत अच्छा है। बिंदु बोली थी, अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके। लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम भी न लिया। बड़ी जीजी इससे बड़ी निश्चिंत हो गई, लेकिन बिंदु रात दिन रोती रही, चुप होने का नाम ही न लेती थी। उसको क्या कष्ट है ये मैं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए ये बात कहने का साहस नहीं होता था। कहती भी किस बल पर, मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक तो लड़की, उस पर काली, जिसकी यहाँ जा रही है वहाँ उसकी क्या दशा होगी। इन बातों की चिंता न करना ही अच्छा था। सोचती तो प्राण कांप उठते। बिंदु ने कहा, जी जी ब्याह के अभी 5 दिन और हैं, इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उसे खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के एक दिन पहले बिंदु ने अपनी जीजी के पास जाकर कहा, जीजी मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वही करूंगी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस तरह मत धकेलो मुझे। कुछ दिनों से जीजी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे थे, उस दिन भी झरने लगे। लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी तो है। उन्होंने कहा, बिंदु जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात तो ये थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था। बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे वर के ही घर में हो। उनके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांति नहीं सह सकेंगे, इसलिए चुप रह जाना पड़ा। लेकिन एक बात तुम में से कोई नहीं जानता। जीजी को बताना चाहती थी पर फिर बताई नहीं, नहीं तो वे डर से मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था। सोचा था जीजी की नजर में तो जरूर ही पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने जैसे देखकर भी नहीं देखा। दुहाई दी धर्म की, इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, जीजी तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया। मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे जैसी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें कभी नहीं त्याग सकती। 3 दिन बीते, तुम्हारे तालुके के लोगों ने तुम्हें खाने के लिए जो दिया था उसे मैंने तुम्हारे जठराग्नि से बचाकर नीचे वाले कोयले की कोठरी के एक कोने में रख दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिला आती। 2-1 दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा, उसे खिलाने की बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने की ओर ज्यादा था।

पिछले हफ्तों में आपने सुना, मृणाल अपने पति के नाम पत्र लिखती है जिसमें अपने अतीत की तमाम कड़वाहटों का जिक्र करती है। मृणाल की शादी उस घर में होती है जहाँ पुरुष सत्ता है, जहाँ स्त्री का अपना कोई विचार या अस्तित्व नहीं है। विधवा माँ की मृत्यु के बाद मृणाल की जेठानी की बहन बिंदु अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार

0: दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। मुझे देखते ही वो मेरे पैर पकड़कर चुपचाप रोने लगी। बिंदु का पति पागल था। सच कह रही है बिंदु? बोलना।
1: दीदी, तुम्हारे सामने क्या मैं इतना झूठ बोल सकती हूँ? दीदी, वो पागल है, वो पागल है। इस विवाह में ससुर की सहमति नहीं थी, लेकिन मेरी सास से यमराज की तरह वे सब डरते थे। ब्याह के पहले ही वे काशी चल दिए थे। सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर लिया।
0: मैं वहीं कोयले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री पर स्त्री को दया नहीं आती, कहती है कोई लड़की थोड़ी ही है। लड़का पागल है तो हो, है तो पुरुष ना, है तो पुरुष। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता कि उसे कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता। ब्याह की रात वो ठीक था, लेकिन रात में जगते रहने के कारण और इसी तरह के और झंझटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी थी। अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। न जाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु रानी ससमणी हो। नौकर ने हो न हो चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी के खाने के लिए भात दिया हो, इसीलिए उसे क्रोध आ गया था। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास ने उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी। वो भी पागल ही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था, लेकिन डर के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया था। पति जब सो गए तब काफी रात बीतने पर वो किसी तरह चतुराई से भाग कर चली आई। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु, तू जैसे रहती थी वैसे ही मेरे पास रहे, देखूं तुझे कौन ले जाता है यहां से। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोलती है। मैंने कहा वो कभी झूठ नहीं बोलती। फिर तुम लोगों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम। फिर मैंने कहा मैं अच्छी तरह से जानती हूं बिंदु झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने डर दिखाया। अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो आफत में पड़ जाएंगे हम। मैंने कहा क्या अदालत ये बात नहीं सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल वर के साथ कर दिया गया है। तुमने कहा था तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे हम? हाँ, हमें ऐसी क्या गरज पड़ी है। जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर करूंगी। तुम लोगों ने फिर कहा था क्या वकील के घर तक दौड़ोगी? हाँ, इस बात का क्या जवाब होता? सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकती थी मैं। उधर बिंदु के ससुराल से उसके जेठ ने आकर बाहर बड़ा हंगामा खड़ा किया। कहने लगा थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े, ये बात मैं किसी भी तरह से मान नहीं सकती थी। मैंने हिम्मत करके कहा करने दो थाने में रिपोर्ट, देखती हूँ मैं। इतना कहकर मैंने सोचा कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजा तो बिंदु का कहीं पता नहीं। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी उसी समय बिंदु ने स्वयं

बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया था। वो समझ गई थी कि अगर वो इस घर में रही तो बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी मैं। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया। उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था ना। संसार में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ नहीं है, उनकी तुलना में तो उनका लड़का सोने का चांद था। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा, जिसका भाग्य ही खराब हो उसके लिए रोने से क्या फायदा भला। संसार भर में कायरता के इस सबसे अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष मन को कभी तनिक भी संकोच नहीं हुआ, इसलिए मानव जन्म पाकर भी तुम लोग बिंदु के व्यवहार पर क्रोध कर रहे थे। उसे तुम्हारा सिर नहीं झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत न था। मैं तो गांव की लड़की थी जिस पर तुम लोगों के घर आ पड़ी, फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी। धर्म संबंधी तुम लोगों की ये चर्चा मुझे किसी भी प्रकार सहन नहीं हुई। मैं निश्चय पूर्वक जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाए, वो अब हमारे घर लौट कर नहीं आएगी, लेकिन मैं तो उसे ब्याह के एक दिन पहले ये आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते उसे नहीं छोड़ूंगी मैं।

सुनो कहानी में इन दिनों आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ पत्नी का पत्र। इस कहानी का ये था तीसरा भाग। वाचन स्वर ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इस कहानी का चौथा भाग आपको सुनवाएंगे अगले शनिवार को हवा महल कार्यक्रम में।

0: की आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार से।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग अयोध्या। फोन 9267988901।
3: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती PM सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: फिल्मी गीतों के कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शोभित द्विवेदी। दोस्तों एक ही कलाकार में आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री दिव्या भारती की।

दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। वह भारतीय फिल्म उद्योग की एक चमकती हुई अदाकारा थी जिन्होंने अपने छोटे से करियर में एक बड़ा नाम कमाया। दिव्या ने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म बोबली राजा से की थी जो 1990 में रिलीज हुई। उस फिल्म में उनके अभिनय की क्षमता दर्शकों के सामने आई और लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बना ली।

दिव्या भारती की पहली हिंदी फिल्म विश्वात्मा 1992 में रिलीज हुई थी, जो कि एक सुपरहिट फिल्म रही और उसके ऊपर फिल्माया गया गाना सात समुंदर पार आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है। इसके बाद दिव्या ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, जिसमें शोला और शबनम, दीवाना, बलवान, दिल का क्या कसूर, दिल आसना है, रंग आदि थी। उन्होंने अपने समय के प्रमुख अभिनेताओं जैसे गोविंदा, शाहरुख खान, कमल सदाना, ऋषि कपूर, सुनील शेट्टी के साथ काम किया।

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
8: नहीं अछूता हो जिस...
7: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
9: फिल्मी गीतों के कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री दिव्या भारती की। दोस्तों, दिव्या भारती का करियर तेजी से बुलंदियों पर जा रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5 अप्रैल 1993 की रात केवल 19 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई। उनकी अचानक मृत्यु ने प्रशंसकों को गहरे सदमे में डाल दिया। भले ही दिव्या भारती की जिंदगी बहुत ही कम समय में खत्म हो गई, लेकिन उनकी फिल्में और अदाकारी ने उन्हें अमर बना दिया।

अप्रैल 1993 में दिव्या भारती के अचानक निधन के बाद उनकी कुछ फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से थीं रंग। कमल सदाना और आयशा जुल्का के साथ आई यह फिल्म उनके निधन के बाद रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर रही। 1993 में आई फिल्म शतरंज, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और जूही चावला के साथ आई यह फिल्म दिव्या भारती की आखिरी स्क्रीन अपीयरेंस थी।

1992 में शोला और शबनम फिल्म में गोविंदा के साथ आई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। 1992 में ही ऋषि कपूर और शाहरुख खान स्टारर दीवाना फिल्म के लिए दिव्या भारती को फिल्म फेयर लक्स न्यू फेस अवार्ड मिला। 1992 में ही पृथ्वी के साथ इस फिल्म के गाने काफी मशहूर हुए। फिल्म का नाम था दिल का क्या कसूर, दिल आसिना है। हेमा मालिनी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में वे शाहरुख खान के साथ नजर आईं। गीत फिल्म में अविनाश बधावन के साथ भी दिव्या की जोड़ी बनी, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। सुनील शेट्टी के साथ बलवान और गोविंदा के साथ जान से प्यारा फिल्म उन्होंने की, जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। जैकी श्रॉफ के साथ आई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल ही तो है। साथ ही क्षत्रिय में मल्टी स्टारर इस फिल्म में वे सन्नी देओल, संजय दत्त और रवीना टंडन के साथ आईं। दक्षिण भारतीय फिल्मों की बात करें जो दिव्या भारती ने की, उसमें बोबली राजा वेंकटेश के साथ आई यह फिल्म, असेंबली राउडी मोहन बाबू के साथ, रोडी अलडू चिरंजीवी के साथ, धर्मा क्षेत्रम बालकृष्ण के साथ, चेतमा मोगंडू मोहन बाबू के साथ और नीला पन्ने आनंद बाबू के साथ आई। उनकी एकमात्र तमिल फिल्म थी।

दिव्या भारती अपनी मासूमियत, खूबसूरती और बेहतरीन अभिनय के लिए हमेशा याद की जाएंगी। अपने चाहने वालों के दिलों में दिव्या आज भी जीवित हैं और उनके द्वारा निभाए गए किरदारों को लोग आज भी पसंद करते हैं। साल 1992 में दिव्या की कुल 12 फिल्में रिलीज हुई, जो भारतीय सिनेमा में किसी भी नई अभिनेत्री के लिए आज भी एक रिकॉर्ड है। दिव्या को फिल्म दीवाना के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। दिव्या भारती को उनके बेहतरीन अभिनय, चुलबुले अंदाज और मासूमियत के लिए हमेशा याद किया जाएगा।

दोस्तों कार्यक्रम एक ही कलाकार से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त शोभित द्विवेदी को। आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम केंद्रित था हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री दिव्या भारती पर। आप सुनना ना भूलिएगा रात्रि 9:15 पर महफिल गजल और 9:30 से 10:30 तक सजीव फोनिंग प्रोग्राम हेलो अयोध्या।

0: Hello.
1: Hello. No. Telephone number.
2: My number is
3: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
4: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार से। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। उसके पश्चात 9 बजे सुनिएगा न्यूज एट 9।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर

0: साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लीडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी

को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अशोक खोतला की गाई सी गजल के साथ कार्यक्रम महफिले गजल अब यहीं पर समाप्त होता है। FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: अब के शहर में भरोसेमंद इलाज
3: कैंसर हृदय डायलिसिस हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त
2: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा
3: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायबरेली रोड अयोध्या कॉल करें 90-44-20-70-70।
0: रात्रि के 9:30 हो चुके हैं और शुरू हो चुका है वो प्रोग्राम जिसका रहता है आपको बड़े ही बेसब्री से इंतजार यानी कि हेलो अयोध्या। जी हाँ, स्टूडियो में आपके साथ मैं हूँ शोभित द्विवेदी। उठाइए फोन और डायल कीजिए वही पुराना जाना पहचाना नंबर 73-76-80-40-90। फोन मिलाते होंगी आपसे बातें, आप सुनेंगे अपने ही पसंद के नगमे। हमारे जो कॉलर अभी जुड़ रहे हैं या पहली बार जुड़े हैं उनको हम फिर से अपना नंबर एक बार बता दें 73-76-80-40-90। आइए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, पहली कॉल में ही आवाज नहीं आ रही है। हमारी आवाज सुन रहे हैं?
4: हेलो
0: जी, कहाँ आप सो गई? आवाज आ रही है हमारी?

0: लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं कैसे आपकी आवाज।
1: कहाँ है नेटवर्क में आइए आप, नाम बताइए अपना, नाम क्या है आपका? आंखें फिल्म का गाना, अपना नाम तो बताइए पहले।
0: पुरानी फिल्म है सर।
1: नाम क्या है आपका? नाम हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है साफ। चलिए, अरे मोहब्बत वाली, पहले अपना नाम तो बताइए मैडम। चलिए गाना सुनिए आप, और किसी और दिन कॉल कीजिएगा, आप नेटवर्क में नहीं लग रहा है।

तो दोस्तों कॉल करने के बाद नेटवर्क में रहें आप, और कम से कम रेडियो को अपने से दूर कर लें। आप अपनी बात कीजिए, अपने घर वालों को रेडियो के पास रखिए, वो आपकी आवाज़ को सुने। बहुत एक्साइटमेंट होकर रेडियो के पास ना बैठें। और फिर मैं कह रहा हूँ नेटवर्क में रहें, वरना कॉल कट जाएगी।

0: तुझको तेरी।
1: हाय देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो।
2: हाँ
1: जी, नाम बताइए अपना।
2: राम प्रकाश।
1: राम प्रकाश, कहाँ से फोन लगाया है?
2: महाराजगंज जिले से भैया।
1: महाराजगंज जिले से? थोड़ा रेडियो से दूर हो जाइए, या कोई है आपके अगल बगल?
2: हाँ
1: आपके आसपास कोई है, या आप रेडियो के पास बैठे हुए हैं?
2: हम तो इस समय अकेले ही हैं।
1: अकेले ही हैं? क्या करते हैं राम प्रकाश?
2: हाँ।

0: खेती गृहस्थी करते हैं सर।
1: खेती किसानी करते हैं। गाना कौन सा सुनेंगे आज?
0: हिना पिक्चर से।
1: हाँ चलिए, हिना पिक्चर से गाना सुनवा रहे हैं आपको। नमस्कार।

0: आइए दोस्तों देखते हैं हमारे अगले साथी कौन हमारे साथ हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए।
1: जी सतीश चंद्र बोल रहे हैं, अमानी गुरुद्वारा से।
0: सतीश चंद्र
1: जी? जी
0: अमानीगंज गुरुद्वारा, ये अयोध्या वाला ना?
1: हाँ जी जी।
0: क्या करते हैं सतीश भाई?
1: साइकिल काम करते हैं।
0: साइकिल का काम करते हैं
1: जी जी,
0: वही अमानीगंज में ही?
1: जी नहीं नहीं, चौक में रहते हैं, जमुनियाबाद में काम करते हैं।
0: अच्छा, चौक
1: कॉल रहे हैं भैया को।
0: तो कहाँ इस समय, चौक में ही हैं?
1: नहीं नहीं, घर पे आ गए हैं।
0: घर पे आ गए हैं
1: जी।
0: तो सतीश भाई गाना कौन सा सुनेंगे?
1: अपना पन फिल्म का सॉन्ग।
0: अपना पन फिल्म का?
1: आदमी मुसाफिर आता है जाता है।
0: तो सतीश भाई कॉल लगती है आपकी यहाँ पर
1: जी?
0: कॉल यहाँ पर लगती है आपकी, पहले भी लगी है?
1: लगती है, अभी एक हफ्ता पहले बात हुई थी।
0: अच्छा, एक हफ्ता पहले बात हुई थी। चलिए गाना सुना दे रहे हैं, अपनापन आदमी मुसाफिर है।
1: जी जी
0: ठीक है सतीश भाई, कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।
1: ओके सर, ओके।

0: दोस्तों सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और आपको बता दें कंट्रोल रूम से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं स्वप्निल मिश्रा। ये देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो
1: जी सर,
0: नाम बताइए।
1: सर सुनील कुमार।
0: सुनील रेडियो पहले दूर हो जाइए वरना हम फोन काट देंगे आपका।
1: जी सर क्षमा करें,
0: तुरंत फोन काटेंगे। बिल्कुल दूर हो जाइए रेडियो से।
1: नहीं नहीं सर प्लीज सर, ओके सर, हमें नसीम मूवी का गाना सुना दीजिए।
0: हम बिल्कुल नसीम मूवी का गाना सुनाएंगे। जब आप लोग रेडियो के पास रहते हैं ना तो बात नहीं हो पाती है और फोन डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। चलिए सुनील जी क्या करते हैं बताइए।
1: सर हम यही वर्किंग करते हैं, वेल्डिंग वगैरह।
0: वेल्डिंग का काम करते हैं। कहाँ पर?
1: सर यही अयोध्या सिटी में।
0: अयोध्या सिटी में ही?
1: जी जी।
0: तो घर पे आ गए हैं इस समय?
1: जी सर हम घर पे हैं, वीडियो सुन रहे
0: हैं। खाना पीना हो गया
1: सर? ओके सर।
0: हेलो
1: हाँ सर हो गया, खाना पीना हो गया सर।
0: तो गाना सुनवा देना। कौन सा गाना सुनेंगे नसीब का? कौन सी नसीब? नसीब बहुत सारी है।
1: तुमने मेरी जिंदगी खराब की है।
0: तुम्ही ने मेरी जिंदगी, अरे शादी हो गई सुनील भाई?
1: जी सर, जी सर हो गई।
0: गाना किसके लिए है
1: सर? अपनेपन के लिए
0: है। अपनेपन के लिए है?
1: नहीं नहीं कंसेंट अपने लिए है।
0: अच्छा सिर्फ अपने लिए, किसी के लिए है नहीं ना?
1: नहीं नहीं ऐसे नहीं, बस इच्छा है।
0: क्या कह रहे हैं?
1: इच्छा है सुनने की सर।
0: अच्छा गाना सुनने की इच्छा है, बाकी सब? हाँ बाकी सब ठीक है,
1: सब बढ़िया है, सब ओके है सर।
0: चलिए ठीक है, गाना सुनिए। कॉल करने के लिए धन्यवाद
1: जी सर। नमस्कार।

0: आज देखते हैं हमारे अगले साथी कौन हमारे साथ हैं लाइन पर। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताइए।
1: सर प्रियदर्शनी।
0: प्रियदर्शनी।
1: प्रियदर्शनी।
0: प्रियदर्शनी।
1: हाँ।
0: कहाँ से फोन लगाया है?
1: बस्ती से।
0: बस्ती से। नाम आपका बहुत प्यारा है।
1: थैंक यू सर।
0: किसने रखा है नाम?
1: भैया ने।
0: भैया ने रखा है। तो क्या करती हैं प्रियदर्शनी?
1: सर अभी ट्वेल्थ का पेपर दिए हैं। और आगे नाम लिखाना है।
0: ट्वेल्थ का पेपर दिए, आगे नाम नाम कहाँ लिखाना है आगे? कॉलेज में?
1: यस सर।
0: अच्छा, तो और क्या करती हैं घर पे? घर का काम वगैरह करती हैं?
1: हाँ सर, अभी खाना बना रहे थे हम।
0: खाना बना नहीं अभी?
1: बना रहे थे खाना।
0: तो फोन कहाँ लगा दिया फिर?
1: फोन लगाया। लग गया।
0: अभी किसी ने खाना खाया नहीं?
1: नहीं भैया ये खा रहे हैं।
0: तभी तो आप बना ही रही हैं। अच्छा, बनाते आप बना रही, वो लोग खा रहे हैं।
1: हाँ।
0: हम ये नहीं पूछेंगे कि आपने क्या बनाया, ठीक है? बताइएगा भी नहीं आप हमको, गाना बताइए।
1: गाना बादल फिल्म का सुना दीजिए, आंखों के रास्ते दिल में।
0: आंखों के रास्ते दिल में उतर कर, जुगनी जुगनी। क्यों प्रियदर्शनी काय हंस रही हैं आप?
1: नहीं सर, पहली बार कॉल लगी है ना इसीलिए।
0: पहली बार कॉल लगी आपकी? इससे पहले कभी नहीं लगी?
1: यस सर।
0: सही बताना।
1: सर सही बता रहे हैं।
0: अच्छा, ऐसा क्यों, आपने कभी लगाया नहीं या मिला नहीं फोन?
1: लगाते हैं पर लगता नहीं, व्यस्त बताता है।
0: व्यस्त बताता है। तो फिर बताइए, आज आपकी कॉल लेकिन लग गई है खाना बनाते बनाते।
1: यस सर।
0: तो कुछ कहना चाहेंगी और?
1: क्या कहें, जो कहना
0: थके तो कहना था, कह दिया। आप खाना बनाइए, सबको खिलाइए और हम आपको सुनवा रहे हैं जुगनी जुगनी, ठीक है?
1: यस सर।
0: बाय बाय।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते।

0: अब आइए देखते हैं और कौन अगले हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए।
1: खुदा ने खुश होकर के पूछा कि क्या चाहिए। मैंने कहा खुशी, कामयाबी और लंबी उम्र। अंदर से फिर आवाज आई किसके लिए? मैंने कहा कि इस वक्त जिनसे मेरी बात हो रही उनके लिए।
0: वाह रफीक भाई, क्या बात है। शायराना अंदाज में आपने शुरुआत किया है। कहाँ से फोन लगाया है?
1: पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह मोहम्मद मंसूर मंसूरी, इंदौर तो शायरों का ही शहर है ही है, क्यों?
1: जी जी जी,
0: एक से एक शायर हुए हैं वहाँ पर।
1: हाँ,
0: क्या करते हैं?
1: गायक भी हुए हैं।
0: गायक भी हुए हैं, बताइए कोई नाम।
1: एक्टर भी हुआ है
0: जी।
1: एक्टर भी हुए हैं।
0: एक्टर भी हुए हैं, सब इंदौर में पाए जाते हैं।
1: वैसे तो सभी दुनिया में पाए जाते हैं पर इंदौर में भी कुछ है।
0: इंदौर में कुछ ज्यादा पाए जाते हैं।
1: हाँ,
0: तो क्या करते हैं आप?
1: मैं सिलाई करता हूँ सर।
0: सिलाई का काम करते हैं इंदौर में ही?
1: जी जी इंदौर में।
0: चलिए, गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: इंग्लिश बाबू देसी मैम का।
0: इंग्लिश बाबू देसी मैम।
1: हाँ,
0: कोई खास वजह है गाना सुनने की?
1: इसका गाना है दीवाना दिल हुआ दीवाना।
0: दीवाना दिल हुआ दीवाना। चलिए रफीक भाई, गाना
1: ठीक है ना? तो और कोई सा बता दो।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल यही गाना सुनवाएंगे, इंग्लिश बाबू देसी मैम।
1: जी जी,
0: चलिए गाना सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का और फोन करने के लिए धन्यवाद
1: जी। शुभ रात्रि सर।
0: शुभ रात्रि आपकी, हमारी अभी बहुत देर में होगी। नमस्कार।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा, शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
2: सही फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं शोभित द्विवेदी के साथ आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। हेलो।
3: हाँ सर
2: जी, नाम बताइए।
3: निन्नू प्रसाद सर।
2: निन्नू प्रसाद
3: अयोध्या।
2: अयोध्या से निन्नू प्रसाद।
3: बोल
2: 30-35 साल से फोन लगा रहे हैं आप
3: जी।
2: वाह निन्नू भाई, तो आज पहली बार लगा है।
3: आप पहली बार सर लगा?
2: ऐसे कैसे आप 30 साल से मिला रहे हो, आज पहली बार लगा?
3: जी जी
2: नहीं, हम पूछ रहे हैं ऐसे कैसे हुआ कि आप इतने साल से लगा रहे हैं और अभी तक आपका फोन नहीं लगा? चलो गाना कौन सा सुन रहे हो बताओ।
3: धर्म काटा सर।
2: धर्म काटा
3: जी जी।
2: चलो धर्म काटा फिल्म का गाना सुनिए आप, और फोन करने के लिए धन्यवाद।
3: नमस्ते।

0: दोस्तों हेलो, अयोध्या का आधा सफर पूरा हो चुका है तो आपकी सोच में है, उठाइए फोन और डायल कीजिए 7376-4090। हेलो हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अजीत शर्मा, ग्राम नगला संख्या पोस्ट औरंगाबाद, जिला काशी, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: क्या हाल चाल है अजीत भाई?
1: बढ़िया है।
0: बढ़िया है, क्या करते हैं?
1: साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं।
0: तो रेडियो सुनते हैं आप, प्रोग्राम आकाशवाणी अयोध्या?
1: हाँ जी सुनते हैं।
0: सुनते हैं
1: हाँ जी।
0: तो गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: गाने को बोले मैंने इतना गड्डी लेके, फिल्म का नाम गदर।
0: चलिए ये गाना हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी पसंद पर। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।

0: आइए दोस्तों देखते हैं हमारे अगले साथी कौन है हमारे साथ लाइन पर। हेलो हेलो।
1: हाँ सर।
0: जी सर नाम बताइए अपना।
1: ये भी नहीं मिल रहा है।
0: हाँ जी नाम बताइए अपना। नाम पहले नाम बताइए।
1: नाम मेरा जगप्रसाद वर्मा।
0: वर्मा जी कहाँ से फोन मिलाया है?
1: ये अयोध्या में पूरा ब्लॉक में दतौली एक गांव है।
0: हाँ दुगुआ दतौली अगल बगल है शायद।
1: जी जी जी हाँ दुगुआ सड़क के दक्षिण है और हाँ, सड़क के उत्तर है।
0: सही पकड़े हैं हम ना?
1: जी।
0: तो आप दतौली के रहने वाले हैं?
1: जी जी जी दतौली के।
0: तो क्या करते हैं वर्मा जी?
1: सर क्या करते हैं, उम्र ज्यादा हो गई, खेती बाड़ी ही करते हैं।
0: खेती का काम करते हैं।
1: सर
0: तो प्रोग्राम सुनते हैं हमारे?
1: इसका मतलब एरिया आपकी परिचित है?
0: हाँ बिल्कुल भैया, यहीं अयोध्या में हम भी रहते हैं।
1: हाँ सर
0: अयोध्या में हम भी रहते हैं भैया।
1: अरे हाँ तो
0: दुगुआ
1: कहीं
0: ना ना एकदम अयोध्या से लेके फिर सराय राशि और माया बाजार पूरा बाजार दुगुआ दतौली देवगढ़ माया गोसाईगंज तक कहाँ तक ले चले आपको हम?
1: जी सर आपने पूरा वही बता दिया
0: है कि नहीं? अच्छा आप बताइए फिर प्रोग्राम आप हमारे सुनते हैं?
1: हाँ सर।
0: हेलो अयोध्या सुनते हैं कैसा लगता है आपको?
1: अरे सर ठीक है, कल बहुत सुंदर लगता है। हम तो एक ही फरमाइश थी और उसके बाद में एक हवा महल सुनते हमको बड़ा आनंद आता है।
0: हवा महल वेद भारती पर?
1: हाँ, तो फिर खेती किसानी भाई बराबर सुनते।
0: जी बहुत अच्छे। आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: हम तो वही कह रहे थे बल्ब प्रदर्शिया आपके पास नहीं।
0: कौन सा
1: होता है सुना दो।
0: कौन सा गाना?
1: वो बल्ब प्रदर्शिया हम चाहते थे, बहुत दिन हो गया नहीं सुने।
0: बलम परदेसिया तो हम नहीं सुनवा पाएंगे आपको, ना बलम है ना परदेश में, पता नहीं कहाँ गए बलम।
1: बहुत पुराना गाना है ना।
0: अब बलम हम कहाँ ढूंढी इतनी रात में बताइए आप।
1: अरे खेती बाड़ी है उसमें बात नहीं सर, हमने
0: नहीं हम आपकी बात मान रहे हैं 100%, लेकिन हम बलम नहीं ढूंढ पाएंगे इस समय। और कोई बताइए।
1: जी जी तो बीबी हो तो ऐसी है नहीं? वो भी नहीं,
0: बीबी हो तो ऐसी बिल्कुल सुनवाएंगे। अब हर बात थोड़ा नहीं मना करेंगे आपको, इतने पुराने आदमी हैं आप।
1: सर एक चीज और बताऊँ कि फोन मिलाते हैं बराबर, कभी आज बहुत दिन के बाद एक बार और मिला था तो आज ही मिला बस।
0: हाँ नहीं मिलता नहीं फोन ना?
1: जी मिलता हमेशा व्यस्त है, व्यस्त
0: हम
1: है।
0: अच्छा अब आपको हम एक बात बता रहे हैं, जब हम यहाँ नहीं होते हैं हम भी बाहर से मिलाते हैं ना, तो हमारा भी नहीं मिलता है।
1: जी
0: पता नहीं क्यों। चलिए बीबी हो तो ऐसी सुनवा दे रहे हैं आपको।
1: जी,
0: फिल्म देखी है आपने? हेलो।
1: जी सर
0: हमने कहा गाना सुनवा रहे हैं आपको। वर्मा जी कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: जी सर नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: आए देखते हैं दोस्तों हमारे अगले साथी कौन है। हेलो।
1: हाँ नमस्कार
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए।
1: इश्तियाक अहमद बबरची, बलरामपुर से, ग्राम देवरिया इनायत, साजुल्ला नगर थाना।
0: क्या हाल चाल है इश्तियाक भाई?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: मैं भी ठीक हूँ। क्या करते हैं?
1: हम यही खाने का काम करते हैं।
0: खाने का काम मतलब खाना खाने का काम करते हैं या बनाने का काम करते हैं?
1: नहीं, बनाने का काम करते हैं।
0: अच्छा, वहाँ खाना बनाने का काम करते हैं।
1: हाँ।
0: तो यानी कि शादी वगैरह में आप खाना बनाते हैं?
1: हाँ जी जी जी।
0: अच्छा, क्या क्या बनाते हैं?
1: अरे बहुत कुछ आइटम बनाते हैं सर जी।
0: बहुत है? हाँ,
1: ऐसा नहीं है।
0: जो भी शादी खाना होता है, शादी का जो भी खाना होता है।
1: हाँ, शादी में बनाते हैं तो हम लोग का आइटम जो है बताने लायक नहीं रहता है। क्या बताएं आप,
0: क्या बताएं। हाँ सही बात है, बताइएगा भी नहीं, मुंह में पानी आएगा इस समय है कि नहीं।
1: बहुत आइटम बनते हैं हम लोग में। आप लोग शाकाहारी लोग हैं।
0: अच्छा है? जी
1: ठीक नहीं पड़ता है ना।
0: अरे वाह, बिल्कुल नहीं भाई, खाने पीने में जिसका जो मन वो खाए। बताइए गाना कौन सा सुनेंगे?
1: गाना हमको सुना दीजिए, धूल का फूल का।
0: धूल का फूल का, चलिए ठीक है। कौन सा गाना सुनेंगे इस फिल्म का?
1: यही वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता
0: हूँ। ये कौन सा गाना है? ना ये गाना तो नहीं है इस फिल्म में।
1: नहीं है?
0: नहीं है, बिल्कुल। मिल गया। अरे इश्तियाक भाई, बिल्कुल। चलिए गाना सुनवा रहे हैं आपको इश्तियाक भाई, कॉल करने के लिए धन्यवाद। कुछ और कहना चाहते हैं?
1: धन्यवाद, नहीं कुछ नहीं। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: दोस्तों, हेलो। अयोध्या का आधे से ज्यादा सफर लगभग निकल चुका है और अंतिम पड़ाव पर ही उठाइए फोन और डायल कीजिए 7374804090। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताइए।
1: सीमा।
0: सीमा कहाँ से?
1: देवकाली से।
0: देवकाली से क्या करती हैं सीमा? हाउसवाइफ हैं आप? घर का काम करती हैं? हाउसवाइफ हैं, बिल्कुल घर का काम करेंगी। गाना कौन सा सुनेंगी आज?
1: इतिहास फिल्म का।
0: तो घर का काम हो गया आज?
1: हाँ सर, हो गया सर। मैं बड़ी देर से फोन लगा रहे थे, लग ही नहीं रहा था, फिर लग गया। लेटे थे,
0: लेटे हुए थे
1: बाहर जब फोन लगा था।
0: हाँ, तो उससे घर का सारा काम खत्म करने के बाद आपने फोन मिलाया?
1: नहीं सर, बना रहे थे तभी से लगा रहे थे।
0: क्या बना रही थी?
1: लगी नहीं रहा था, फिर
0: क्या बना रही थी?
1: सर पूरी बनाए थे, गलका बनाए थे।
0: अरे बाप रे, पूरी और गलका।
1: Yes,
0: अरे सीमा जल्दी इस गाना सुनो भाई, नहीं तो एकदम क्या बताएं हम। खाए कि नहीं अभी, ये बताओ। अभी खाया कि नहीं आपने?
1: खा
0: भी ली
1: तो,
0: बताने की क्या जरूरत थी पूरी और गल का। बताइए, चलिए, पूरी और गल का बताने की क्या जरूरत थी आपको हमें? अब आप गाना सुनिए, हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, आप गाना सुनिए।
1: ठीक है, नमस्ते।
0: नमस्ते, बाय बाय
1: बाय बाय।

0: आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़े हैं लाइन पर। हेलो
1: जी सर, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए कहाँ से?
1: स्वामी
0: नारायण छपिया से। नाम क्या है?
1: आशुतोष गिरी।
0: आशुतोष गिरी
1: जी सर,
0: क्या करते हैं?
1: सर जी घर पे रहते।

0: हैं, घर का काम करते हैं।
1: घर पे रह के घर का काम करते हैं
0: जी सर।
1: गाना आज कौन सा सुनेंगे?
0: अभी नीलकमल फिल्म का सुनवा दीजिए।
1: नीलकमल फिल्म का
0: जी सर।
1: और कुछ कहना चाहते हैं?
0: नहीं सर।
1: चलिए नीलकमल फिल्म का गाना सुनिए। आशुतोष भाई कॉल करने के लिए धन्यवाद
0: जी सर।

0: दोस्तों हेलो अयोध्या का एक आखिरी फोन हम और अटेंड कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए जल्दी से, कहाँ से फोन लगाया है?
1: सर मैं चौड़ा राजस्थान से अमर सिंह बोल रहा हूँ सर।
0: अमर सिंह राजस्थान से?
1: जी सर।
0: बहुत दूर से फोन मिला दिया आपने।
1: हाँ सर, मिलाना पड़े, बहुत दूर से कॉल सुनते थे इसलिए मिलाना पड़े सर, क्या करें।
0: जी बिल्कुल। अमर भाई क्या करते हैं?
1: खेती किसानी करते हैं सर।
0: खेती किसानी करते हैं, गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: 20 साल पिक्चर का गाना है सर, 20 साल बाद।
0: 20 साल बाद?
1: हाँ, पिक्चर का नाम और गाना की बोले हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
0: जी तो कहाँ इस समय, घर पर हैं या बाहर हैं कहीं?
1: हाँ अभी घर पे हूँ सर मैं।
0: अभी घर पे हैं?
1: जी सर।
0: चलिए गाना सुनवा दे रहे हैं आपकी पसंद का। अमर भाई कॉल करने के लिए धन्यवाद, कुछ और कहना चाहते हैं?
1: हाँ सर, कुछ दोस्त है हमारे संदीप गजराज लोधी, ऐसे दोस्त है सर हमारे।
0: चलिए ठीक है, आप सब लोग गाना सुनिए, धन्यवाद
1: जी सर। नमस्कार
0: नमस्कार।

दोस्तों हम आपको बता दें कि कंट्रोल रूम से हमारे साथ लगातार बने हुए थे स्वप्निल मिश्रा। कभी फकीर कभी शाह कभी दिल नशे की तरह, कभी फकीर कभी शाह कभी दिल नशे की तरह, जिंदगी रोज हमसे मिलती है अजनबी की तरह। इन्हीं शब्दों के साथ सजीव फोनिंग प्रोग्राम हेलो अयोध्या से दीजिए इजाजत अपने दोस्त शोभित द्विवेदी को।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई

0: विभाग की कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथा कथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashwani, the Ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifacts in Sweden, Per Stenfeldt, expressed optimism.